وضرب لنا

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: कुल मन अलैहा फान,
0: जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: We'll be back after this short commercial break.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back, hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: Pepsi.
1: One FM.

Dobr. One FM.

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back, hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: हर इंसान का हक है कि उसकी ज़िंदगी रोशनियों और उम्मीद से भरपूर हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया और इसकी रंगीनियों को देखने और महसूस करने में ही जिंदगी का लुत्फ है। अलशफा ट्रस्ट पिछले 34 साल से इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल के क्याम का बुनियादी मकसद उन लोगों तक रसाई है जो इलाज का खर्च उठाने के मुतहम्मिल नहीं है। अपने ज़कात और अतियात अलशफा ट्रस्ट को दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बनें।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 140,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है। अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मेयारी इलाज की सहूलियत फराहम करना है, ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम न रहे। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल लाहौर के तवस्सुत से अब एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने, ताकि हर आंख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।
2: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: लो चलो।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101. There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बे फॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: हर इंसान का हक है कि उसकी ज़िंदगी रोशनियों और उम्मीद से भरपूर हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया और इसकी रंगीनियों को देखने और महसूस करने में ही जिंदगी का लुत्फ है। अलशफा ट्रस्ट पिछले 34 साल से इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल के क्याम का बुनियादी मकसद उन लोगों तक रसाई है जो इलाज का खर्च उठाने के मुतहम्मिल नहीं है। अपने ज़कात और अतियात अलशफा ट्रस्ट को दें और किसी की ज़िंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 1,40,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है। अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मेयारी इलाज की सहूलियात फराहम करना है, ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम न रहे। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आई हस्पताल लाहौर के तवस्सुत से अब एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने, ताकि हर आंख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।
4: I love FM 101.

0: हर इंसान का हक है कि उसकी ज़िंदगी रोशनियों और उम्मीद से भरपूर हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया और इसकी रंगीनियों को देखने और महसूस करने में ही जिंदगी का लुत्फ है। अलशफा ट्रस्ट पिछले 34 साल से इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान के हर कोने में आँखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल के क्याम का बुनियादी मकसद उन लोगों तक रसाई है जो इलाज का खर्च उठाने के मुतहम्मिल नहीं है। अपने ज़कात और अतियात अलशफा ट्रस्ट को दें और किसी की ज़िंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने।
1: You're listening to FM 101, a Bale Bale or Shower Shower.
0: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 140,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है। अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करना है ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम न रहे। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आई हस्पताल लाहौर के तवस्सुत से अब एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की ज़िंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने ताकि हर आंख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: I love FM 101।

0: चलो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक बारिश होने वाली है।

दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ तज़वीराती शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का एआदा किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के खुले मुबाहसे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस्लामी तआवुन तंजीम ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का एआदा किया है।

0: Socks. And now you're tuned into FM 101.
1: हर इंसान का हक है कि उसकी जिंदगी रोशनियों और उम्मीद से भरपूर हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया और इसकी रंगीनियों को देखने और महसूस करने में ही जिंदगी का लुत्फ है। अलशिफा ट्रस्ट पिछले 34 साल से इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के क्याम का बुनियादी मकसद उन लोगों तक रसाई है जो इलाज का खर्च उठाने के मुतहम्मिल नहीं है। अपने ज़कात और अतियात अलशिफा ट्रस्ट को दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने।
0: And now you are tuned into
2: FM 101.
1: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 1,40,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है। अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करना है ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम न रहे। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल लाहौर के तवस्सुत से अब एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने ताकि हर आंख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।
2: I love FM 101.

FM 101, நால் நால் சடே தி நால் நால் துவாடே. क्यों जी, कोई शक है क्या?

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे।
1: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: दिस इज FM 101
2: एंड नाउ यू आर ट्यून्ड इनटू
3: FM 101 FM 101 FM 101 FM 101 FM 101 101 101 101।
4: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे, क्यों जी कोई शक है क्या?
5: Hello listeners, relax, unwind and let the vibes take over. Ladies Lounge starts now with your favorite RJ Rubina Vajahal.
6: FM 101, a bale bale o shower shower.

0: जी बिल्कुल, ये एफ एम 101 है और मुझे रुबीना वजाहत कहते हैं और आज दिन है मंगल का। अगर हम बात करते हैं मौसम के हवाले से तो यकीन करें इतनी शदीद गर्मी थी ना और मुझे लग ही नहीं रहा था कहीं से भी कि मैं मॉर्निंग के प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कई आफ्टरनून का प्रोग्राम जो है वो कर रही हूँ, दोपहर के लिए मैं जो है ना यहाँ पर रेडियो की तरफ बढ़ रही हूँ। मुझे बिल्कुल इतनी शदीद गर्मी महसूस हो रही थी और ख़ासतौर पर जब मैं देख रही थी रास्ते में आते आते भी तो सूरज की तपिश इतनी ज़्यादा थी कि रोड जो है वो भी सही जिसे कहते हैं ना कि हीट जो है वो उसको फेंक रही थी। और ये जब कभी हम देखते हैं ना तो आप देखें कि जब बड़ी ईद का मौसम मतलब मौका होता है तो इसमें ज़रूर इतनी ही गर्मी इतनी ही शिद्दत से होती है। कभी बहुत बहुत ही कम देखने में आया था कि मतलब आता है कि मौसम जो है ना वो ठीक हो, यहाँ तक कि हमें लगता है कि महकमा मौसमियात जो है वो बताते हैं कि जी मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम रात की बात करते हैं तो देखें तकरीबन पिछले पूरे एक हफ्ते से जो है ना वो शदीद गर्मी वाली रातें भी गुजर रही हैं और दिन भी गुजर रहे हैं। और ये शायद मुझे ये लगता है कि जो अगर हम बात करते हैं ये इसकी बकरीद की या ईद जिसको ईद कुर्बा भी कहते हैं, ज़िलहज की भी बात हम करते हैं, तो इसमें जो है ना वो ख़ास तौर पर पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो शायद अपने लिए जो है ना वो दुआ ज़रूर करते रहना चाहिए। कहते हैं कि जब गर्मी तेज़ हो और आप बाहर निकलें तो आप जो अल्लाहुम्मा अजरनी आयत जो है ना उसका विर्द ज़रूर किया करें। और इस आयत को विर्द करने से क्या होता है कि वो जो गर्मी होती है शिद्दत जो आप बर्दाश्त करते हैं उससे अल्लाह ताला उस शिद्दत की वजह से उसको बर्दाश्त करने की वजह से वो जो जहन्नुम की आग है ना उसकी शिद्दत से आपको बचा लेते हैं। और ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। और एक और चीज़ भी है, कहते हैं ना कि जैसे अगर हम बात करते हैं ईद के हवाले से तो इसको योम नहर भी कहते हैं, यानी कि कुर्बानी का दिन। और ये दिन जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए इसको जो है वो हर साल मुसलमान जो है वो बड़ी अकीदत के साथ इसको मनाते हैं। आज़मीन हज जो है वो मनासिक हज अदा करते हैं और उसके बाद फिर जो सुन्नत इब्राहिमी है वो फरीज़ा जो है वो सर अंजाम देते हैं। और कहते हैं कि अगर आप कुर्बानी करते हैं, नॉर्मल बात मैं कर रही हूँ, अगर आप कुर्बानी करते हैं तो खालिस अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी की नीयत से कुर्बानी करें। उसमें ये ना करें कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि दिखावा कितना ज़्यादा किया जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें शेयर की जाती हैं, जानवरों की तस्वीरें शेयर की जाती हैं, फिर उनकी कीमतें बताई जाती हैं, फिर उनके मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं। मतलब ये कि इतनी एक लंबी बहस है, अगर हम इस पर बात करना शुरू करें तो शायद ये लंबी बहस ही चलती रहेगी कि कितने कितने नाम रखे जाते हैं उन जानवरों के और उसके बाद फिर उनके कलर और उनकी हाइट और उनके वेट को बताया जाता है और उसको मतलब एग्जैजरेट भी किया जाता है, कीमतों को एग्जैजरेट किया जाता है। इससे ये होता है कि जो दूसरे लोग हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते या सफ़ेद पोश लोग जो किसी न किसी तरह से मतलब ज़ाहिर है बच्चों ने कहा है या फैमिली में या कहीं रख रखाव करना है तो वो कहीं ना कहीं से जानवर का अरेंज तो कर लेते हैं लेकिन वो फिर वो आपस में कंपटीशन में लग जाते हैं। तो देखें कि हम अपने असल जो फरीजा है उसे कितनी दूर निकल जाते हैं। सो इन चीज़ों को हमने हमेशा जहन में रखना है। कभी भी कुर्बानी के जानवर के लिए जो है ना जब आप लेने के लिए जाएं तो उसकी तस्वीर इस तरह से ना करें कि इसका वेट इतना है, मैंने सबसे महंगा जानवर ख़रीदा है या मैंने मंडी फलां मंडी से जो है फलां जानवर जो है जो सबसे ज़्यादा कीमती था मैंने वो ख़रीदा है। ये अल्लाह ताला की तौफीक है कि वो जिसको जितना ज़्यादा अता करना चाहे, लेकिन ये है कि जब अल्लाह ताला की अता होती है तो उसमें शुक्र बजा लाएँ, ना कि आप उस चीज़ को जो है ना वो मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो तस्वीरें उसकी लगाते फिरें और दूसरों को दिखाते फिरें। इन चीज़ों से बचें और कभी भी गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। कीमत जो है वो कीमत में कभी भी गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया है तो सही और सच बताना चाहिए, चाहे आपने कम कीमत में भी अगर आपको कोई अच्छा जानवर मिल गया है। वैसे बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि सारा साल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो घर में आप जानवर रखें, पूरा साल उसकी खिदमत करें और उसके बाद आप उसकी कुर्बानी करें, क्योंकि सही और बेस्ट तरीका यही है। तो जब आपको उस जानवर से इंसियत हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, वो जैसे कहते हैं ना कि अपनी कोई कीमती चीज़ है उसको देने का फिर दिल नहीं करता, तो फिर जब उसको आप अपने रब की राह में कुर्बान करते हैं तो सोचें कि उसका क्या मुकाम है। और फिर मुकाम इस तरह से भी आपको मिलता है कि जब आप कुर्बानी करें तो आप ये देखें कि किसने कुर्बानी नहीं की है। जिसने कुर्बानी नहीं की आप उनकी लिस्टें बनाएं और उनके घरों में उनको बगैर बताए जो है ना उनके घरों में आप गोश्त पहुँचा दें, ताकि ये जो लंबी लाइनें लगाते हैं, ये जो घरों के बाहर कितारें लगवाते हैं, उन चीज़ों से उस अजियत से भी लोग बच जाएं और किसी के घर में दो वक्त का अच्छा खाना भी बन जाए। ये है हमारा इस्लाम और इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है और कितने ही अच्छे तरीके से जो है ना वो हमें ज़िंदगी के उसलूब के बारे में समझाता है। और अगर हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं और सीख लेते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर यकीन करें कि हमसे ज़्यादा अच्छे लोग कौन हो सकते हैं। बिल्कुल, आप भी बहुत अच्छे लोग हैं और आप अच्छे हो सकते हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आपकी समातों से टकरा रही है, तो आप अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। जैसे तारिक साहब लाहौर वाले, वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि खुश इखलाकी और खुश उसलूबी ऐसी खुशबू है कि जिसकी जो महक है वो मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। बिल्कुल, हमारे अगर हम बात करते हैं कि बींग अ मुस्लिम, हमें ये चीज़ें बताई गई हैं, हमारा दीन इस चीज़ के लिए हमें तालीम देता है कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक से रहना है, खुश इखलाकी से रहना है, और खुश इखलाकी से खूबसूरत या खुश जो चीज़ है या खूबसूरत चीज़ है वो कोई नहीं होती। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ज़मीर हक की हक का रास्ता दिखाता है, ठीक है ना। इनके आप कभी भी कोई चीज़ गलत करने लगते हैं, कोई ऐसा काम गलत करने लगते हैं, तो आपको ज़मीर जो है वो फ़ौरन मलामत करता है कि ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको इस तरह से करो। तो क्या होता है कि वो हक का रास्ता दिखाता है, और हक का रास्ता तब तक दिखाता रहता है यानी कि तौबा जो है ना वो मौत का रास्ता, मौत का जो है वो उसकी आखिरी हिचकी तक उसका दरवाज़ा खुला है, और ये हक का रास्ता दिखाता है उस आखिरी दरवाजे तक पहुँचने के लिए। सो तौबा ज़रूर करते रहना चाहिए, अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगते रहें, क्योंकि आप जब माफ़ी मांगते हैं तो कोई पता नहीं कि कभी कौन सा दरवाज़ा जो है ना वो आपके हक़ में बेहतर तरीके से खुल जाए, और आपकी मांगी हुई दुआ दूसरों के लिए कौन सा दरवाज़ा खोल दे। सो ज़रूर दुआओं में याद भी रखा करें दूसरों को, और अपने लिए दुआ ज़रूर करते रहा करें।
1: हम दो सना
0: 11:25 हुआ चाहते हैं स्टूडियोज की घड़ी के मुताबिक, मेरा और आपका साथ ठीक दिन के 1 बजे तक रहने वाला है।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101। संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दिस इज FM 101
2: एंड नाउ यू आर ट्यून्ड इनटू
3: FM 101
4: FM 101
5: FM 101
6: FM 101
7: FM 101
8: 101 101 101 101

FM 101 लाहौर स्टूडियो आपसे मुखातिब और आपकी समातों से टकराने वाली आवाज़ आपकी अपनी आरजी रुबीना वजाहत की है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बख़ैर वाफियत अपनी ज़िंदगी के मामला सर अंजाम दे रहे होंगे। इतनी गर्मी में भी वो लोग बड़ी हिम्मत वाले होते हैं कि जो अपने जो काम होते हैं ना उनको पूरे तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ जो है ना वो सर अंजाम देते हैं। वरना तो कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि जी आज गर्मी बहुत है चलो जी काम से छुट्टी कर लो, आज सर्दी बहुत है चलो जी काम से छुट्टी कर लो, आज बाहर रश बहुत है काम से छुट्टी कर लो, आज ये चीज़ हो गई है छुट्टी कर लो। मतलब वो छुट्टी कर लो एक दिन छुट्टी हो जाती है। सो ज़िंदगी में छुट्टी ना हो उसके लिए क्या होता है कि आपको ख़ास बनना होता है और ख़ास बनने के लिए बहुत छोटे छोटे से काम भी आपको करने पड़ते हैं। छोटे छोटे काम करके ही आप बड़े कामों के लिए अहल होते हैं। आपने कभी देखा है कि आप जब कभी किसी ऐसे इदारे में गए हैं या कभी किसी ऐसे ऑफिस में या किसी ऐसी जगह से किसी ऐसी पर्सनैलिटी से आपका इत्तफाक हुआ है मिलने का, तो पता चलता है कि ये यहाँ पर जो है वो बहुत छोटे दर्जे पर थे और उसके बाद ये जी बड़े लेवल पर बड़े ओहदे पर पहुँच गए हैं। तो क्या हुआ कि वो छोटे छोटे काम करके छोटी छोटी चीज़ें सीखकर वो इतने ख़ास बन गए कि फिर सबके लिए ख़ास हो गए। इनके आम लेवल से उठकर ख़ास लेवल तक पहुँचने के लिए छोटे लेवल से शुरू करना बेहद ज़रूरी होता है। और बिल्कुल इसी तरह से ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें जब कभी कोई काम करने लगते हैं ना, हम कोई भी चीज़ हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, हमारे अकेले करने से क्या होगा। लेकिन याद रखें कि आपके करने से बहुत कुछ होगा। ये जितने भी लोग आज इतने सक्सेसफुल हुए हैं ना, जो जिनको आज दुनिया याद रखती है, वो बड़े बड़े नाम, तो उन्होंने भी छोटे से छोटे स्टेप से शुरू किया था। और आपको पता है ना कि अल्लाह ताला को छोटे छोटे जो काम है छोटे छोटे स्टेप से लेकर करने वाले लोग जो है वो बेहद पसंद हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम मेरे तरफ एक कदम बढ़ाओ मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। और बिल्कुल इसी तरह से 10 कदम उनकी तरफ बढ़ते हैं कि जो एक कदम मुस्बत अंदाज में उठाते हैं और अच्छे तरीके से अच्छी सोच के साथ चलते हैं। और एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि अगर हम बात करते हैं आज के दिन के हवाले से या हम बात करते हैं मैदान अराफात में, तो आप सब बीइंग अ मुस्लिम हमें इस बात पर फ़ख्र भी होता है और हमें तस्करा भी करना चाहिए इस चीज़ का, बातों ही बातों में ज़रूर लेकर चलना चाहिए कि मैदान अराफात में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज दिया था इससे इसके जो अहम नकात थे उनको ज़रूर दोहराते रहना चाहिए और उनको लफ्ज़ों ही लफ्ज़ों में दूसरों तक बात को पहुँचाना भी ज़रूर चाहिए। क्योंकि इसमें कहा था कि ए लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूँगा, मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और उनको उन लोगों तक पहुँचाओ जो यहाँ पर नहीं पहुँच सके। और कहा कि ए लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त और हुरमत वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी इज़्ज़त और माल हुरमत वाले हैं, तुम इनको छेड़ नहीं सकते। यानी कि देखें, कहते हैं ना कि आपका मजाक भी सिर्फ उस तक हद तक है जहाँ पर दूसरे बंदे की नाक शुरू नहीं होती। यानी कि आप अगर कोई मजाक भी करें तो अपनी हद तक रखें और वो मजाक के लेवल तक रहना चाहिए। हमें छोटी से छोटी चीज़ में जो है ना, हमारे इस्लाम ने बताया कि हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और किस तरीके से जो है ना वो हमें अपने असलूब को सवार करना है। इसी तरह से लोगों की अमानतें उनको वापस कर दो। यानी कि आप देखें कि हम आज क्या करते हैं, हमारे पास अगर किसी ने कोई अमानत रख ही दी है तो एक तो ये कि हम पता नहीं कहाँ से हम लोग लॉजिक्स ढूंढ लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मेरे साथ इसने ये किया था और उस वक्त इसने मेरे इतने पैसे दे लिए थे, अब मैं चाहूँ तो मैं इसमें से निकाल सकता हूँ, मैं अपना लेकर मैं इसको वापस कर सकता हूँ। नहीं, ये सारी की सारी जो खराबात हैं ये हम अपने जहन के ख़ुद से ही घड़ लेते हैं। हालाँकि अमानत ये है कि जितनी आपको दी है आपने उसको उतनी ही वापस करनी है। ऑल दो कि आपके पास मतलब आपने ऑलरेडी उसकी कोई चीज़ देनी थी या उससे लेनी थी, वो बाद के मामलात हैं, या जब लेते हैं लेन देन करते हैं तो तय कर लेना चाहिए, ना कि बाद में इस तरह के खराफात में पड़ जाना चाहिए और अपनी अच्छाई को भी बुराई पर जो है वो आप क्या कहते हैं कि तरजीह देने के बजाय जो है उसको नीचे ले जाते हैं, निचले लेवल तक ले जाते हैं। सो हमें निचले लेवल तक नहीं लेके जाना, बल्कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है और ना सिर्फ खुद सीखना है बल्कि इनको दोहराना भी है। जैसे कहते हैं ना कि ईमान एक ऐसा पौधा है, ऐसा प्लांट है, या ऐसा समझ लें कि एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको बार बार तरोताज़ा करने की ज़रूरत होती है, और तरोताज़ा तभी होता है जब उसको हम दोहराते रहेंगे, हम बताते रहेंगे अल्फाज में, कहानियों की सूरत में, तय दिल तय दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ देखें कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बातें की हैं। और अगर हम लेडीज़ लाउंज की बात करते हैं तो देखें, ये ख्वातीन का ख़ास प्रोग्राम है और ख्वातीन के ख़ास प्रोग्राम में मैं ज़रूर एक बात ये भी करना चाहूँगी कि इस खुतबे में ना सिर्फ के हर चीज़ को देखा गया बल्कि ख्वातीन के लिए भी कहा गया है कि तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हकूक पूरे कर रही हैं तो तुम भी इनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। यानी कि देखें कि दोनों के लिए कितनी खूबसूरती बयान की गई है कि ख्वातीन पर हक रखती हैं, जब वो अपने हकूक पूरे कर रही हैं तो
जब वो अपने हकूक पूरे कर रही हैं, तो तुम भी इनकी

0: को लड़कों को मिलना चाहिए। दोनों ही बहुत खास हैं, लेकिन दोनों ही के लिए बराबरी का भी कहा गया है। मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं कि जहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ, इनके बेटे भी हैं और बेटियाँ भी हैं, लेकिन दोनों में एक खास तजाद रखा जाता है, एक खास फ़र्क रखा जाता है। ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने इस्लाफ से बहुत दूर चले गए हैं, और जब हम अपने इस्लाफ से दूर चले जाते हैं, हम अपने असल से दूर चले जाते हैं। जब हम अपने असल से दूर चले जाते हैं तो हम पर फिर वो वाले रंग चढ़ने लगते हैं कि जो जिन रंगों में हम उस वक्त घूम रहे होते हैं। और कहते हैं ना कि आप वैसे ही होते हैं जैसी आप सोहबत इख्तियार करते हैं, और हर इंसान जो है ना अपने दोस्त के दीन की सोहबत पर होगा।
1: वाली वाली का
0: इन चीज़ों को याद रखें, इन चीज़ों को सोचते रहें, इन चीज़ों को दोहराते रहें, अपने आप को फिल्टर करते रहें। मुझे अच्छी तरह याद है लास्ट प्रोग्राम जब था तो तब भी आज ही का दिन था, और मैंने तब भी अपने आप से ये वादा किया था और अपने रब से वादा किया था कि मुझे अगला दिन, अगला मतलब नेक्स्ट जो हज आएगा उसका दिन मुझे मिलेगा। तो मैंने इस तरह से ये बातें करनी हैं। और आप बिलीव करें कि कौन जानता था कि यहाँ पर तो किसी को एक लम्हे का भी पता नहीं है, और मेरे रब ने मुझे वो दिन दोबारा दिखाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर मौजूद हूँ।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: दिस इज FM 101।
3: एंड नाउ यू आर ट्यून्ड इनटू
4: FM 101
5: FM 101
6: FM 101
7: FM 101
8: 101 101 101 101 101

0: 12:37 ऑन द राइट डायल 111-000-101 हमारा जो है वो रابطे का नंबर है. इसके साथ साथ आप हमारी पोस्ट को जो है वो अपडेट हो चुकी है उस पर भी अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं. जल्दी से जाते हैं एक और कॉलर की तरफ, देखते हैं कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं आसिफ अली लाहौर.
0: सॉरी नाम बताइएगा दोबारा.
1: आतिफ अली लाहौर.
0: आतिफ अली लाहौर से बात कर रहे हैं जी. आतिफ साहब क्या कहना चाहेंगे आप?
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम था जी. बड़ी सबक मोल बात है.
0: बहुत शुक्रिया आपका.
1: देखे सारे बातें कर रहे हैं ना, बेसिक सारी चीज तो है नीयत की. इतना मालूम आ रहा है जी. अगर हमारी नीयत ठीक है तो फिर तो वो जो भी हम अमल करेंगे उससे लापरवाही होगा. अगर हम नुमाइश करते हैं तो हमें पता है कि ये हम नुमाइश कर रहे हैं
0: ऐसे ही है.
1: फिर तो ये है कि हम कभी भी गोश्त फ्रिज में नहीं रखेंगे, सांझे नहीं बुलाएंगे. कोशिश करेंगे कि जितने गरीब लोग हैं, हम आए हैं जी, उन तक पहुंचे. हम तो सारा साल खाते रहते हैं
0: ऐसे ही है.
1: लेकिन पैसा बड़ा फ्लोट होता है, बहुत कम रहता है. बातें तो हम बहुत करते हैं लेकिन बहुत कम.
0: चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका. बहुत शुक्रिया वाकई में. ओके थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़ जी. ऑलमोस्ट जो सबसे बात हुई है तो उसका लुबे लुबाब यही निकला है, और जो उसका क्रक्स है वो यही निकला है कि मतलब वही बात आ जाती है, इन्ना अमालु बिन नियात. और अगर आपकी नियत अच्छी है तो फिर अल्लाह ताला जो है ना वो नियतों को बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं. मोहम्मद हफीज़ रहमान भक्कर से आपका फिर अच्छा मैसेज आया है. ओके और मोहम्मद हफीज़ आ चुके हैं. मोहम्मद हफीज़ ईदगाह जनूबी भक्कर वाले, अहसन ख़ान लाहौर से, एम रज़ा चौधरी मुल्तान से, गुल यासीन नास स्कर्दू से, इकबाल और इकबाल मेहंदी और तमाम सामईन को उन्होंने सलाम भेजा है. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा ये जो हम बार बार बात करते हैं ना कि जी हम फ्रिज में गोश्त रख लेते हैं और कुछ इस तरह से कर लेते हैं, आपको पता है कि जो हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी जो है ना बेसिकली इसका क्या है कि जब आप कुर्बानी करते हैं ना खालिस नियत के साथ, तो क्या होता है कि आपका जो जैसे ज़कात देते हैं ना तो आपका माल पाक हो जाता है. ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा है कि ये पाक हो जाता है. ठीक है, ये हम मेरी और आपकी तो बात ही नहीं है. तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप कुर्बानी करते हैं ना उसकी राह में, उसकी उसकी रज़ा की खातिर, उसकी खुशनूदी हासिल करने के लिए, आप मुझे बताएं कि जब आप कभी किसी जगह पे आपने काम, आपको कहीं ऑफिस में कहीं काम करते हैं, ठीक है ना, अब आप अपने किसी ऑफिसर को बुलाते हैं, किसी बड़े अफसर को बुलाते हैं, अपने घर में दावत देते हैं, तो क्या करते हैं आप उसकी खुशनूदी हासिल करना चाहते हैं. या फिर अगर अपने घर में नहीं भी बुलाते तो आप उस ऑफिस में भी काम करते हैं तो आप कहते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि मैंने वही करना है, यस सर, यस सर, यस बॉस करना है. ठीक है, सो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे यही होता है ना कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपसे वो खुश होंगे. जब वो खुश होंगे तो क्या करेंगे कि आपके लिए कुछ बेहतरीन होगा उस इदारे में या उस जगह में या उस ओहदे में. सो बिल्कुल इसी तरह से जब हम अपने रब की बात करते हैं तो जब हमें अपने रब की खुशनूदी मिलती है तो फिर हमारे लिए भी उसमें बेहतरीन होता है. लाइन पर एक और कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहे हैं? उस्मान भाई. अच्छा जी, सलामत रहे, क्या हाल है आपके? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या कह रहे हैं?
2: मैं कह रहा हूँ भूल गए अब हमें.
0: नहीं नहीं जी, किसी को भी नहीं, कोई भी भूला.
2: अच्छा अच्छा, बस गर्मी है ना इसलिए कमी बेशी हो जाती है.
0: अच्छा अच्छा सही, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से?
2: जी आज का दिन है बहुत अजीम दिन है
0: जी,
2: और मैदान अराफात का दिन है. खुले आसमान के नीचे वो सब इकट्ठे होके एक ही आवाज दे रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक. ठीक है जी, उसका पैगाम यही है कि हम अपनी जहाँ उधर भी जाके हम जब हाजिर होते हैं ना
0: जी,
2: वहाँ भी हम अपने गुनाहों से, अपनी अनाहों से, अपनी गलतियों की माफी तलब कर रहे होते हैं.
0: हेलो जी, जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात कर रहे हैं
2: जी. तो उधर भी हम यही बात कर रहे होते हैं कि अल्लाह हमें बख्श दे, हमसे कोई गलती हो गई है, हम यहाँ पर भी आपका नाम लेंगे जब वापस जाएंगे अपने अपने मुल्कों में, तो वहाँ जाके हमें तौफीक देना कि हम इसको कारबंद रहे.
0: बिल्कुल ऐसे ही.
2: तो लेकिन यहाँ से जब हम जाते हैं तो उस वक्त हमारे जो फीलिंग्स होती है और होती है, जब वहाँ से हम वापस आते हैं फिर और होती है.
0: ऐसे ही है.
2: लेकिन आगे चेंज नहीं होना चाहिए आगे, कि वहाँ से हम कहेंगे घर जाके वापस हम ये करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे आगे अक्सर देखते हैं हमने कि वो आगे वही हरकतों शकना जो यहाँ पे करते रहे हैं वही फिर आगे करते हैं. लेकिन ये बात होता तरफ चली जाएगी, लेकिन पैगाम

0: यही है कि अनाए और जिद और हसद इनको हम कुर्बान करेंगे, फिर हमारी इबादत का भी मकसद है, नफ्स को कुर्बान करेंगे, फिर हमारी इबादत का भी मकसद है। अगर ये कुर्बान नहीं करेंगे तो फिर वो कहते हैं ना मक्के की अंगाल नहीं मुकदी जितनी देर तक दिलोड़ा मुकाइए।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, ये चीज है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान,
0: आज का बहुत अजीम दिन है। तो कोशिश करें कि गलतियां हो जाती है इंसान से, अगर वो फूर रहीम रब माफ कर रहा है तो इंसान को भी माफ कर देनी चाहिए।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि एक बार अगर माफ कर दिया जाए तो दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए, यानी कि इरिटेशन की हद तक है कि एक दफा माफी मांग ली फिर दोबारा कर लिया, फिर माफी मांग ली फिर बाद में कर लिया, वो फिर वो वाला जो ना उसको अल्लाह ताला पसंद करता है ना उसको अल्लाह ताला के बंदे पसंद करते हैं, बस ये थोड़ा सा याद रखनी है।
0: वो भी आपकी बात राइट है, लेकिन हम देखे ना गुनाह करते हैं अल्लाह के, लेकिन जब हम उसकी तरफ रुजू करते हैं वो माफ कर देता है।
1: हाँ बिल्कुल, लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि सच्ची तौबा, ये नहीं कि आप मतलब ठीक है ना सच्ची तौबा, ठीक है
0: वो खेलकूद नहीं ना करना।
1: हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलें बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपका, ठीक है।
0: हाँ तो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और आपको भी एडवांस में अगर आपका शो हुआ तो देखेंगे, अगर ना हुआ तो फिर
1: चलें फिर कुछ फिर किसी और को सुन लेंगे, ठीक है ना।
0: नहीं नहीं फिर भी आपको सुनेंगे, आप किसी और को तो सुनना ही सुनना, आपका जो आपका आपसे हमने कुछ सीखना होता है वो आपसे सीखना, जो किसी से सीखना वो किसी से सीखना।
1: बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़।
1: और लेसन्स टाइम बहुत कम है और मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोग्राम में शामिल करूं। हम मुख्तसर सी बात अब करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब जैसे टाइम कम होता जाता है ना तो मुकाबला सख्त हो जाता है। सो देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, आप जी की हाल है? ठीक हो?
1: हाँ जी, नाम बताइएगा।
2: बोधी जट गल कर रहा जी, रावि दे कंडे तो।
1: हाँ ठीक है, आज के दिन के हवाले से क्या बात करेंगे?
2: आज के दिन के हवाले से यही कहूंगा कि आप जी बिल्कुल जो मुनाफक बंदा होता जो दिल दे विच बुग्ज रखता है बिल्कुल जो किसी नाल झगड़ा झुगड़ा है तो बिल्कुल ओहदे नाल सुलह सफाई रख, जो अड़ताली घंटे इंसान अपने किसी नूं नहीं ना बुलाएगा मुनाफक हुंदा आप जी, ते अड़ताली घंटा फिर किसी नाल लड़ाई भी होवे तेनूं बुला लेना चाहिए, तो सालों के साल जड़े हो गए ने लोग भैन भरावान लड़े ने तो नहीं बुला रहे ते बुलाना चाहिए है, ईद कुर्बानी दी हर किसी नूं बिल्कुल बुला लेना चाहिए। और मेरा एक दोस्त नाल झगड़ा सी ते मैं रहा उहदे कोल, उहने सलूट फेर सवेरे फेरना सलूट के सरकार मैनूं माफी दे दे।
1: चलें ठीक हो गया जी, बहुत अच्छी बात है।
2: खैर होवे सर, सब सुनने वालेयां नूं सलाम आप जी, तुहाडा शो बहुत अच्छा ते तुहानूं दो हत्थां नाल सलूट, तुहाडी पूरी टीम नूं सलूट जी,
1: बहुत शुक्रिया।
2: ते ओह कहने लोकां नूं मत्तां देवण वाले रहिंदे आप हनेरे, चुगे लंबे तस्बियां पा के तस्बियां करन शिकार बथेरे, गल्लां ते वां बड़ियां बड़ियां करदी जी अंबल करे ते फेर इहनां।
1: बिल्कुल सही है।
2: खैर होवे तुहाडी यार अमशाह आपी नूं बहुत बहुत मुबारक, उहनां दा कल निकाह सी ते साडे बहुत बहुत वधाइयां मेरी भैण, अल्लाह पाक नसीब नीक नीक नेक करे ते
1: साजदा आपी
2: नूं खैर होवे, अनीला नूं भी सलाम ते पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन मैंने आपसे ये बात कही थी कि आप लास्ट मोमेंट चल रहे हैं तो आपने मुख्तसर सी बात करनी है, आपने कोई किस्सा जो है ना वो शेयर नहीं करना अभी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम इतना कम है। आप अपनी बात करें और इस चीज़ को समझें, कहते हैं ना हर चीज़ की नौयत होती है, उसको समझना बेहद ज़रूरी होता है। लाइन पर कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम।
3: जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप भी ठीक ठाक?
1: कौन बात कर रहे हैं?
3: मोहम्मद शहजाद शाहबाद से बात कर रहा
1: हूं। जी शहजाद साहब, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे?
3: जी आज का दिन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और माशाल्लाह आज का दिन है तो हमको चाहिए अल्लाह ताला से मांगना, जैसे भी मांगे अच्छे दिल से दिए से मांगे और मांगना चाहिए, अल्लाह ताला हमारी कबूल जरूर करता है जी।
1: बिल्कुल ऐसे ही।
3: तो दूसरी रह गई ये कुर्बानी की बात, देखे जी हमारे बुजुर्ग जो होते ना, हमारे दादा जान या नाना जान नानी जान, ये हम जब कुर्बानी करते थे ना वो कहते थे ये एक जैसा सारा गोश्त बनाना है आप।
1: हाँ जी।
3: कसाईयों को बोल एक जात की एक बोटी एक जैसी, कोई उसने ये कसाई ने पूछा ना बीज में ये पीस रखना है ये ऐसे करना है, उन्हें कह नहीं रखना बिल्कुल नहीं रखना, और उसको बांटते थे एक जैसा।
1: बिल्कुल ऐसे ही एक जैसा,
3: ये कुर्बानी का यही मकसद है सबको एक जैसा मिलो,
1: एक जैसी नजर से देखें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत प्यारा मैसेज।
3: हम हज करन जाते हैं वहाँ पे सारे एक जैसे ही है जी।
1: हाँ जी, एक जैसे
3: कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं है, किसी को ऐसा काम, सब एक जैसे होके आओ जी।
1: बिल्कुल ऐसे ही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
3: बहुत अच्छा जी, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।
1: अच्छा ये वाली जो बात है ना, वाकई में एक जैसी नजर से देखिए और एक जैसे वो जैसे पीस कर लेते हैं, रान अलग कर ली तो ये चाम्पी अलग कर ली और ये चीज अलग कर ली, तो इस चीज को पसंद नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं?
4: मैं जी मोहम्मद सलमान भट्ट इस्लामाबाद लाहौर से बोल रहा
1: हूँ। वेलकम कहती हूँ। आज के दिन के लिए क्या कहेंगे?
4: तो मैं सुन रहा था प्रोग्राम आपका सारा, बस एक ही दुआ है कि हम बातें सुनते भी अच्छी हैं और करते भी अच्छी हैं, लेकिन अमल नहीं करते। अल्लाह करे हम अमल करने वाले बन जाए, अल्लाह करे हमें इन बातों पे अमल करने वाले जल्द बन जाए और हमें सच्ची हिदायत आ जाए।
1: आमीन आमीन। बहुत प्यारी,
4: बड़ी देर से बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, कब कब का सुन रहा था और मैं कॉल मिला रहा था, मगर अब मेरे भी मिले। मैं ये कहूँगा कि बातें तो अब सारी जिंदगी सुनी है, अच्छी सुनते भी हैं, करते भी हैं हम मुँह से, लेकिन अमल नहीं करते। अल्लाह करे हम अमल करना शुरू करते हैं, हमारे अमाल अच्छे हो जाए।
1: आमीन। बहुत शुक्रिया आपका।
4: अस्सलाम वालेकुम।
1: अल्लाह हाफिज़। 12:48 ऑन द राइट डायल। और काफ़ी देर से मैं आपकी बैक टू बैक कॉल्स ही ले रही हूँ। आज मैंने सिर्फ मैंने सोचा कि चलें आज कॉल्स ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। टाइम बहुत कम है, लाइन पर कॉलर है। मैंने कुछ नहीं किया। कहते हैं ना सबर करो सबर करो, सबर बड़ी चीज है। आज चांद निकलेगा, कल तुम्हारी ईद है। और आज चांद जो निकलने की बात है ना, तो उस दुनिया में आज अगर आप सबर कर लेते हो ना, तो कल वो जो एक दुनिया के बाद की दुनिया ना, असल दुनिया वही है और वहां पर हमारी ईद होगी। बस उस ईद को आपने याद रखना है, उसके लिए तैयारी करनी है। कॉलर है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम।
5: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। रुबीना बेटा मोहम्मद तारिक
1: जी। सर खुशामदीद कहती हूँ। आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे?
5: मैं ये कहना चाहूंगा, असल में जिंदगी में ना अमल का अमल दखल बहुत जरूरी है रुबीना बेटा
1: जी।
5: और यकीन की पुख्तगी और इखलाक का हुसन जिस इंसान में हो ना, वो एक ही वक्त में खालिक और मखलूक दोनों का ही महबूब बन जाता।
1: बिल्कुल ऐसे ही है।
5: हाँ, अगर जिंदगी आर्जी है तो मुश्किलात भी मुस्तकिल नहीं, हमें अपने रब की शुक्र गुजारी करते रहना चाहिए, क्योंकि वो इंसान को अमाल के हिसाब से नहीं अपनी रहमतों के हिसाब से नवाजता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका।
5: हाँ, तो अपना यकीन कामल होना चाहिए, यकीन को पुख्ता रखो और अपने अंदर इखलाक का हुसन पैदा करो। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है शुक्र गुजार इंसान।
1: बेशक ऐसे ही है। बहुत
5: आपके पूरी मैनेजमेंट को सल्यूट और सबको मेरा सलाम। अल्लाह ने के बान से सदा जीवे सोना पाते।
1: आमीन। और जनाब टाइम बहुत कम है और मुकाबला भी सख्त है। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो फिर शामिल हो जाइए ना। लाइन पर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम।
1: कौन बात कर रही है?
6: किरण बात कर रही हूँ।
1: किरण बात कर रही हैं। किरण क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से?
6: आज भी आपको ईद मुबारक कहने के लिए फोन किया था।
1: सॉरी,
6: ईद मुबारक कहना था।
1: अच्छा, ईद मुबारक एडवांस में कहना था। बहुत शुक्रिया आपका।
6: और सलामत रखे, बहुत अच्छा शो है, आपकी बातें बहुत प्यारी थी।
1: थैंक यू सो मच। फरिश साफ होगी है, लहसुन अदरक लहसुन पीस के सारे रख लिए हैं, मसाले तैयार कर लिए हैं
6: है ना, कर ली
1: छुरी भी तेज कर ली है। अल्लाह खैर और तुम्हारी खैर। चलें ठीक है किरण, नाम आपका किरण है। और जब ईद का दिन होगा, पहली किरण जब निकलेगी ना, तो सब ने फिर जो है ना वो बस भागने अपने अपने कामों के लिए। ठीक है ना।
6: अल्लाह पाक आपको हर ईद देखना नसीब हो। और माशाल्लाह आप कैसे खुश हैं, जैसे आप दूसरों को देर पर मुस्कुराहट लाती हैं। अल्लाह आप हमेशा खुश रहें, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक ऐसे चमकती चमकती रहे आप।
1: आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया किरण आपका, सलामत रहें।
6: आप अपनी पसंद का गाना लगा दें।
1: आज मैं वैसे कोई भी सॉन्ग नहीं लगा रही हूँ, कोई गॉन थीम नहीं है आज।
6: ये बहुत मुश्किल काम होता है, जैसे आप बात कर रही हैं, लोगों की बातें सुनना करना, ये बहुत मुश्किल काम है। और मैं ये कहना चाहूँगी अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, कामयाबियाँ था आपको, और आपको अल्लाह पाक हमेशा खुश।
1: थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट खवातीन जो हैं वो भी प्रोग्राम सुन रही हैं। अच्छा एक मैसेज मेरे सामने आया है, फरहान इकबाल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें सलाम भेजा है। उसके साथ साथ मोहम्मद तारिक हैं, आज की बहुत बहुत मुबारक हो। राना कदीर राही आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। राना कदीर राही माना वाले से प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और किसकी तरफ से ये मैसेज है, एक और मैसेज मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा उमेर जुनेद हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं, थैंक यू सो मच उमेर जुनेद, आपका भी और सलामत रहें, जीती रहें आप भी। मंजूर हुसैन अंसारी आ चुके हैं फैसलाबाद से, आप सुन रहे हैं हमें। और क्या कहते हैं कि इसके साथ साथ बहुत सारी दुआएं होती हैं जो आप प्रोग्राम में सब सुनने वालों तक पहुँचाते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा लिसनर्स, मैं एक आप बीती अपनी बताना चाहूँगी आपके साथ। मैं बात कर रही थी ना जिस तरह ज़कात दी जाती है और माल पाक हो जाता है, इसी तरह से जब कुर्बानी करती हैं तो अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल होती है। और वो ऐसे ही नहीं मैंने कह दिया, आप बिलीव करें कि हमारे अपने फैमिली में ही, मैं कहूँगी नहीं फैमिली में नहीं, हमारे नेबर्स में मैंने देखा था कि तकरीबन 2-3 साल पहले बिल्कुल नॉर्मल से थे, ठीक है ना, यानी कि उसी तरह जैसे हम लोग जॉब करते हैं और काम शाम करते हैं और अपने जो ख्वाहिशात उनको लेके चलते हैं, सैलरी आएगी तो मैं इसे ये करूँगी, कमेटियाँ डालूंगी और ये होगा और वो होगा। हर बंदा इस तरह के ख्वाब सोचता है, ठीक है ना, और हर फीमेल जो है ना अपने घर को सजाने के लिए इस तरह की चीज़ें सोचती है और करती है, कफायतशारी करती है और उसके बाद उन चीज़ों को लेकर चलती है। अच्छा अब उनके साथ मैंने ये देखा कि उनके घर में ना उन्होंने एक चीज़ रखी, ये चंद साल पहले की बात है, 2-4-5 साल की अंदर अंदर की सारी गेम है। हुआ कुछ यूँ कि वो जब भी ईद आती थी ना तो उन्होंने पहले मतलब जिस तरह से मतलब कुर्बानी का जानवर उन्होंने ख़रीदा और उन्होंने बड़े ही वो जैसे कहते हैं ना कि सही तरीके से उन्होंने उसकी कुर्बानी की और उसके बराबर हिस्से की और सब जगह पे तकसीम किया, उन्होंने एक भी अपने लिए नहीं रखा। अच्छा मैंने पहले सोचा कि ये पता नहीं क्यों इस तरीके से, फिर उसके बाद दूसरी बार एक नहीं दो जानवर हो गए, तीसरी बार आप यकीन करें तीसरे साल जब तीसरा साल आया ना, अल्लाह ताला का ऐसा करम उनके ऊपर हुआ, ऐसा करम उनके ऊपर हुआ कि मैंने देखा कि फिर वो छोटे छोटे से जो जानवर लेकर ना उन्होंने गाँव में कहीं छोड़ दिए और गाँव में छोड़े और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है। आप बिलीव करें मैंने वो चीज़ देखी कि उनके वो 2-4 जानवर, क्योंकि उनकी जो जो फीमेल थी एक वो मेरी फ्रेंड भी थी और वो मुझे बताया करती थी, जिसे कहते हैं ना कि चीज़ें शेयर कर लेते हैं, तो मेरे साथ उन्होंने शेयर किया वो चीज़ें जो है ना, मतलब सॉरी उनके जो जानवर थे अल्लाह ताला ने उसमें इजाफा किया और वो सारे के सारे उन्होंने अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किए। और मैं ये देखती हूँ कि अब माशाल्लाह से उनके घर में ना सिर्फ जानवर इतने ज़्यादा हैं कि मतलब जो कुर्बानी के लिए आते हैं, बल्कि वो हर जगह पर तकसीम भी करते हैं और हर रमज़ान में जो है ना वो हर रोज़ उनके घर में ना 2-3 देगें बनती हैं और वो तकसीम करते हैं, और इस तरह से तकसीम करते हैं कि कोई मतलब कोई भगदड़ नहीं मचती, कोई इस तरह से नहीं चीज़ होती, और ना ही कोई मीडिया, ना ही कोई सोशल मीडिया, ना ही कोई पिक्चर, ना ही कोई सोशल मीडिया सॉरी क्या कहते हैं कि कोई स्टेटस लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैंने इतने मतलब ये 3-4-5 साल का ही सफ़र है जिसमें मैंने देखा है, और अल्लाह ताला ने इतना उन पर करम किया, इतना उन पर करम किया कि मैं जितने लफ्ज़ यहाँ पर बोलूँ इस रिस्क की जगह पर बैठ के यकीन करें उतने ही कम है। और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं कि अल्लाह ताला की खुशनूदी, और जब अल्लाह ताला की खुशनूदी आप के साथ शामिल हाल रहती है तो आपके थोड़े से में भी वो बहुत ज़्यादा बरकत दे देता है, ठीक है। और उनके साथ मैंने ऐसा ही मामला देखा, आज भी उनके घर में माशाल्लाह से देखें कि कितने सारे जानवर हैं, क्या कहते हैं बड़े जानवर भी हैं छोटे जानवर भी हैं, कोई भी ऐसी सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट नहीं होती, बड़े से बड़ा जानवर वो ख़रीदते हैं, अल्लाह ताला ने उनको अब तौफीक दी है, और उसके बाद कुर्बानी करते हैं, सारा का सारा तकसीम कर देते हैं। आप बिलीव करें एक सिंगल पीस भी वो अपने पास नहीं रखते। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा है कि उनकी मतलब ये रूटीन चल रही है कि उसके बाद वो एक जानवर उन्होंने रखा होता है अपने लिए, ठीक है, जब ईद गुजर जाती है 3 दिन गुजर जाते हैं ईद के, तो 4th दिन वो उसको कुर्बानी करते हैं और उसके बाद उसका गोश्त जो है ना वो अपने घर में फिर अपनी फैमिली में, वैसे तो पहले दिन ही दावत करते हैं उनके घर में, जितने भी नाराज़ लोग होते हैं उनको भी बुलाते हैं और घर में जो है ना एक बड़ा उनके घर में महफिल सी होती है, सब लोग आते हैं और खाना वगैरह खाते हैं और सारे उनकी, मैंने देखा कि जो लोग नाराज़ भी हुए होते हैं ना उस दिन वो लाजमी उनको अपने घर में दावत ज़रूर देते हैं और उनको अपने दस्तरखान पे शामिल रखते हैं। सो देखें कि जब किसी की नीयत ऐसी होती है, कोई ऐसी सोच रखता है, तो फिर ना तो कोई नाराज़ इंसान जो है ना उनके साथ ज़्यादा देर नाराज़गी रह सकती है और ना ही जो है ना कोई इस तरह की चीज़ अपने दिल में रखता है, उनको पता है कि इन्होंने जो है ना वो हमारे साथ जो है वो दोस्ती रखनी है और हमारे साथ आगे बहुत सारे मामलों में भी चलना है। सो इस तरह की चीज़ों को लेकर चलें और अल्लाह ताला की खुशनूदी सच्चे दिल से हासिल करने की कोशिश करें, आप एटलीस्ट एक कदम तो उठाएँ, आप यकीन करें कि आप एक स्टेप लेंगे अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाजेगा। और आज के प्रोग्राम को जो है ना वो बस यहीं पर मैं मेरा और आपका साथ 12:57 हुआ चाहते हैं और आखिरी जो है ना ये लम्हात हैं, आपको मैं कहूँगी आज के दिन की बरकत जो है वो ज़रूर समेटिएगा और जो आज की अगर मैं तकबीर की बात करती हूँ तो आज की तस्बीहात ज़रूर अपने साथ शामिल हाल रखिएगा, असर तक का टाइम बहुत कीमती टाइम है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ضرور آپ اپنے ساتھ شامل رکھیں، اور لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک اس کو ضرور آپ جو ہے نا وہ اس کو دہراتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پوری تسبیح جو ہے وہ ضرور دہراتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لا شریک لا لبیک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. سو پروگرام میں ضرور جو ہے نا وہ کوئی غلطی اگر ہوگی ہو تو اس کو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ اب بالکل پینک ہو جاتا ہے بنتا جب ہم نے اینڈ کرنا ہوتا ہے. سو ٹائم جو ہے وہ بالکل مختصر سا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کوئی بات، کوئی میسج، کوئی بھی چیز رہ گئی ہوگی تو بہت زیادہ معذرت. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی، تمام سننے والوں کے لیے. ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی میں وفا کی ملاقات دوبارہ ہوگی. عید کے دوسرے دن آپ کے ساتھ ضرور پروگرام میں شامل ہوں گی، اور اس میں پھر ہم بات کریں گے. کیا بات کریں گے؟ ہم یہ بات کریں گے کہ آپ نے آلائشوں کو کس طرح سے ٹھکانے لگانا ہے، اور گندگی بالکل نہیں پھیلانی، اور بہت صاف ستھرے طریقے سے نفاست کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کے جتنے بھی فرائض ہیں ان کو انجام دینا ہے، سر انجام دینا ہے، تاکہ آپ سے اللہ بھی خوش ہو اور اس کے جو مخلوق ہیں، ان کے لوگ ہیں، جو بندے ہیں، وہ بھی خوش ہوں، ان کے کسی کے لیے آپ مشکلات کا باعث نہ بنیں. Rubina Wajadi signing off by saying Allah Hafiz, take care and bye.
7: This is FM 101.
8: And now you are tuned into
9: FM 101.
10: FM 101.
11: FM 101.
12: FM 101.

0: ذلك يعظم حرمات.
1: This is FM 101.

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राअत, साइंस, जिद्दत और दही तरक्की में पाक चीन तआवुन मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में हैं, जहां वो आज अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सदर मुमलिकत ने जॉर्जिया के सदर और अवाम को उनके यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी है। और लाखों आज़मीन हज आज हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के लिए मैदान अरफात की जानिब रवानदवा हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राअत, साइंस, जिद्दत और दही तरक्की के शोबों में पाक चीन तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा किया है। बीजिंग में पाक चीन ज़रई तआवुन से मुतल्लिक एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़राअत के शोबे में चीन के साथ मजीद तआवुन का ख्वाहां है। वज़ीर-ए-आज़म ने तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान के तमाम सूबों से 1,000 नए ज़रई ग्रेजुएट्स को रिफ्रेशर कोर्सेज और ज़राअत के जदीद शोबों में तरबियत के लिए चीनी जामियात भेजा जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने CPAC-2 को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने के अज़्म का अदा किया है, जिसमें ज़रई शोबा तरजीही लिहाज से सर फहरिस्त है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान चीनी कंपनियों को अपने कारोबार के फरोग और तौसी के लिए भरपूर तआवुन फराहम करेगा और दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी, तजारती और तकनीकी रवाबित को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। वो आज बीजिंग में मरूफ चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी IBI कारपोरेशन के हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सैनेटर मोहम्मद इसहाक डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में हैं। दौरे के दौरान वो अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के आला सतह के मुबाहिसे में शिरकत करेंगे, जिसका उन्वान है बैनुल अक़वामी अमन व सलामती का तहफ़्फ़ुज़, अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और उसूलों की पासदारी और अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के मरकजी किरदार पर मबनी आलमी निज़ाम को मजबूत बनाना। यह इजलास अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में चीन की सदारत के तहत मुनक़िद किया जा रहा है। इसहाक डार अपने हम मनसूबों और अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के आला हुकाम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने जॉर्जिया के सदर मिखाइल कवलाशविली और उनके यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी है। अपने एक पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान जॉर्जिया के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और इन ताल्लुकात के तसलसल के इम्कानात रोशन हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तआवुन के जरिए 2 तरफ़ा रवाबित को मजीद फरोग देने का भी ख्वाहां है। लाखों जाज कराम आज हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए मैदान अरफात की जानिब रवान दवा हैं। रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे असदुल्ला खान ने मक्का मुकरमा से बताया है कि हजाज कराम आज दोपहर तक हज के मरकजी रुकन की अदायगी के लिए मैदान अरफात में मौजूद होंगे। सुनेंगे जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम शेख अली अल हुज़ैफ़ी देंगे, जिसका तर्जमा उर्दू, पंजाबी और पश्तो समेत 35 जबानों में किया जाएगा। हजाज कराम जहर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा करेंगे। वो पूरा दिन इबादात, वज़ाइफ और तलबियों में गुजारेंगे और गुरूब आफ्ताब तक दुआओं, जिक्र इलाही और इनफरादी इबादात में मशगूल रहेंगे। नगरदी की नज़र हो गए हैं। भारतीय जरीदे टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ईद उल अज़हा से कबल नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने गाय, बछड़े और ऊंट की कुर्बानी पर पाबंदी की वार्निंग जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बकर ईद से कबल कुर्बानी और नमाज ईद पढ़ने वालों को धमकी दी है। इसी तरह उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ईद उल अज़हा से कबल सड़कों पर मजहबी सरगर्मियां बंद रखने की तंबीह की है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तजियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk।
1: रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से आप कौमी नशरियाती राबते पर कौमी हज ट्रांसमिशन समाप्त कर रहे हैं। बराह रास्त फरीज़ हज आप हमारी ये खसूसी नशरियात रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से रेडियो पाकिस्तान के मीडियम वेव्स नेटवर्क के साथ साथ FM 93, FM 101 और न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल से बराह रास्त सुन रहे हैं। نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
2: ہرا پر یہ تجلی کس کے جلوے کی نظر آ

ظہور اس کا جو آخر میں ہوا اس سے یہ ظاہر ہے.

होते मुझसे भी गर तो क्या शक था रिसालत में।

फसीहा ने अरब की आज तक है सल्ब गोयाई।

جب آنکھیں بند کی روح القدس نے وہی پہنچائی.

0: फरीज़ हज इस सिलसिले में आप हमारी खसूसी नशरियात रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से रेडियो पाकिस्तान के मीडियम वेव्स नेटवर्क के साथ साथ एफ़ 93, एफ़ 101 और न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल से बराह रास्त सुन रहे हैं। सामिन कराम, कुछ ही देर में मस्जिद नबरा मैदान अरफात से मस्जिद नबी के इमाम और ख़तीब अशेख अली बिन अब्दुलरहमान अल हुज़ैफ़ी खुतबा हज इरशाद फरमाएंगे। जो ही खुतबा हज शुरू होगा हम आपको बराह रास्त सुनवाएंगे। आइए इस वक्त खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हुजूर हदीये नात पेश करते हैं।
1: सहन हरम से देख रहा हूँ, हद नजर से आगे भी सहन हरम

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

0: الله أكبر
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

0: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We will be right back after a short break. Stay tuned.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: This is FM
1: 101. सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.

अच्छा वो वाली बात आपने सुनी है ना कि अक्सर लोग मजाक से ये बात कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, ट्राई जो है वो जारी रखनी चाहिए, ये ट्राई ट्राई अगेन वाली जो बात है वो हम लोग अक्सर करते हैं. वी ऑलवेज फील इट लाइक अच्छा यार काम बने ना बने ट्राई करते रहो, फिर भी कदी ना कदी ना करो तो ना ही है, ट्राई करने से कोई हर्ज नहीं. बट मैं इसको पॉजिटिव साइड पर देखूँ अगर तो बैठे ना कुछ करना जो है इट्स काइंड ऑफ अ फेलियर, फिर आप उसको फेलियर कंसीडर करें. लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं और बार बार ट्राई कर रहे हैं तो देन डोंट कंसीडर इट, फिर इसको फेलियर मत कंसीडर कीजिए. ये सच में आपकी बड़ी कामयाबी है. और वो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तड़प तलब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो फिर कभी ना कभी तो काम भी हो जाता है, कभी ना कभी तो सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं. लिटरली मेरे राइट लेफ्ट दोनों साइड, राइट साइड पे तो अभी लाइट ऑन हुई है एक स्टूडियो की, और जो है मेरे लेफ्ट साइड पे बहुत डार्क है. कभी कभी अंधेरा बहुत ही अजीब लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है. सो ऑल दोज जो लोग सोच रहे थे कि लास्ट वीक जो है शिबा आप थोड़ी सी डाउन थी, आई होप गाइज ये थोड़ा सा आपको रिफ्रेशिंग लगा होगा, है ना. और ये रिफ्रेशिंग एनर्जी लेने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितना ज़्यादा सोचना पड़ा है और कितना ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ा है कि हाय आई वॉन्ट टू गो और मुझे वो पहले वाली वाइब चाहिए. अपनी वाइब ही वापस देखने के लिए जो है, अपने आप को ही वापस करने के लिए कभी कभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है. वो कहते हैं मुझे दे दो प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए, मुझे मेरा अपना वापस कर दो, इट्स लाइक दैट. लाइव कॉल्स प्रॉबेबली आज हम लेने वाले हैं, चांद रात है और कल ईद है, सो हम लोग वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट चांद रात. हमारी ईद पे इस ईद पे क्या तैयारियां हैं और वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो लाइव कॉल इंशाल्लाह आज लेने वाले हैं. तो जो लोग अभी कॉल कर रहे हैं प्लीज़ अभी कॉल मत कीजिए क्योंकि इस टाइम कॉल में लाऊँ कौन ना. कमर्शियल्स भी हैं थोड़े थोड़े से, कमर्शियल भी आज रहेंगे शो में. और आई वांट टू बिगिन ए शो फ्रॉम, करें शुरू दोस्तों. सर

जी से एक बड़ी प्यारी सी चीज़ याद आ गई कि कभी कभी बैठे बैठे अचानक आप मुस्कुराना शुरू करते हैं, कभी कभी ऐसे ही कोई भी ऐसा ख्याल नहीं है बट आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, दिल में एक सुकून सा आए, इत्मीनान सा आए। तो वो बड़ी प्यारी एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि आपकी गैर अरादी तौर पे जो की गई नेकियां हैं ना, यकीन माने वो काम आई हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए जो है वो दुआ के लिए हाथ उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे सुकून सा उतरा है। कभी कभी होते नहीं, कुछ दिन आप सो के उठते हैं तो आप यू फील इट लाइक यार आज मतलब कोई अलग ही एनर्जी है, कुछ अलग ही मूड है, कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा सा ही लग रहा होता है। कभी जब इस तरह की फील होती है तो यकीन मानिए कहीं कोई जो है ऊपर नज़र करें, अल्लाह की का शुक्र अदा किया करें, आसमान की तरफ देखा करें और कहा करें अल्लाह तेरा शुक्र है कोई ना कोई कहीं ना कहीं मेरे लिए दुआ कर रहा है और की गई हुई मेरी नेकियां जो मैंने पता नहीं अरादतन की हैं या गैर अरादी तौर पे मेरे से हुई हैं, तूने उनको देखा है, नज़र में रखा है, यू नो, और वो तो फिर रब है, वो तो किसी चीज़ को नहीं छोड़ता। अच्छा बड़ी मज़े के आप दिन है, आप लोगों को पता है आज वर्ल्ड ड्रैकुला डे है, तो जिस जिस को भी आप ड्रैकुला समझते हैं जिस जिस को भी आप अपनी जिंदगी में ये समझ रहे हैं ना कि यार दिस पर्सन इज रियली प्लेइंग ड्रैकुला वंपायर, मेरा खून पीने वाला रोल जो है वो प्ले कर रहा है मेरी जिंदगी में, उसको जरूर आज टैग कर दें कि ड्रैकुला यू आर रियली वंपायर इन माई लाइफ, आई एम जस्ट जोकिंग। अगर इस तरह का सचमुच मैं किसी टॉपिक रख दूँ ना तो बहुत सारे लोग, कितने सारे लोगों को टैग करते हैं कि यार इस बंदे ने भी मेरा खून पिया हुआ है, इसने भी मेरा खून पिया हुआ है, सो यू आर ऑल वैम्पायर्स।

ओके जी, 4471 के जो मैसेजेस हैं इस गाने के बाद जो है शामिल करेंगे। आई वांटेड टू प्ले दैट सॉन्ग, काफ़ी दिनों के बाद जो है ये गाना मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलो इसको भी प्ले कर लेते हैं। ओके, हियर वी गो।

वेलकम बैक ओके जी। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, अजीब सा गुजरांवाला स्टेडियम में क्या तमाशा लगा है, किस तरह के लोग हैं कसम से। अब पता चला है कि कोई यूट्यूबर वहाँ पे गया था और वो वहाँ पे मैच चल रहा था और वहाँ पे लोगों ने पता नहीं क्या अफरा तफरी कर दी। मुझे तो समझ ये नहीं आ रही है कि लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, क्या किसके पीछे जा रहे हैं। लोगों की कोई पसंद रह ही नहीं गई। सम पीपल आर रियली फॉलोइंग, हाँ जी ये यूट्यूबर है, इसके इतने फॉलोअर हैं, व्हाट दैट लाइक बंदा क्या कर रहा है, वो आपकी ज़िंदगी में उसका क्या रोल है, उसके जो शशके हैं, उसके जो लाइफ है, उसके अपने लिए है, ठीक है। और पता नहीं अजीबोगरीब किस्म की हरकतें लोग करना शुरू, और अच्छा खासा वहाँ पे लड़ाई, गोलियाँ चल रही हैं, लाइक सीरियसली।

कभी कभी ये ज़रूर सोचती हूँ कि पाकिस्तानी होते हुए हमारे आइडियल क्या हैं, कौन हैं, समझ से पाए रहा है इतनी ज़्यादा वो, और बार बार वो वीडियो, अच्छा एक दो बार मैंने वो वीडियो देखी है वाइल आई वाज कमिंग, तो मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है, जब तीन चार बार वो वीडियो मेरे सामने आए एंड आई एम लाइक अच्छा देख ही लूँ क्या हुआ, तो जब मैंने देखा उसके ट्रैक्स देखे तो मैंने कहा ये इतनी फजूल सी वीडियो बार बार मेरे सामने आ रही थी यार, वो जो यूट्यूबर है बड़ा फेमस और अजीबो गरीब किस्म के बयान दे रहा है आजकल, लोग उसके पीछे पागल हुए हैं, और वो जो किसी जो जिसके जो उसके हेटर्स थे उन्होंने वहाँ पर फायरिंग वगैरह बाकायदा की है, यार कोई खुदा का खौफ करो सीरियसली। बहुत सारे आज के शो में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करना है और बहुत सारी दुआएं भी करनी है आज। आप सारे लोगों को पता है कि आज बड़ा ख़ास दिन है और हज का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, सारे लोग दुआ करें और बेतहाशा जो है वो दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, अपने माँ बाप की, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ करें, और जो काम आपकी ज़िंदगी में पहले नहीं हुए हैं उनके लिए दुआ करें, रब से रहम मांगें कि बारी ताला क्या है, ऐसी कौन सी मुश्किलें हैं जो मेरी ज़िंदगी की चीज़ें आसान नहीं हो रही, अपने लिए आसानियां मांगें, दूसरों के लिए आसानियां मांगें, और पहल जो करनी है वो ये है कि पहले दूसरों के लिए आसानियां मांगें, फिर उसके बाद जो है अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुद ही आसानियां जो है वो पैदा करता चला जाएगा। आज सारे लोगों ने ऑलमोस्ट जो है हज के हवाले से जो है वो स्टेटस लगाए हुए थे और हज मुबारक जो है वो एक दूसरे को बोल रहे थे, और आई वाज जस्ट थिंकिंग, आई इवन गॉट माय सेल्फ सम मैसेजेस, कुछ ग्रुप हैं जिनमें ऐड हैं, ख़ास दुआएं जो हैं वो शेयर की जा रही थी एक दूसरे के साथ, और मैं ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही थी, लेकिन फिर मैं ये जो है वो देख रही हूँ कि हम लोग जो हैं ऐसे ख़ास दिनों में ही क्यों ये सारे काम कर रहे होते हैं, सिर्फ ये दिन क्यों हमें चाहिए कि जो है वो इन दिनों में हम लोगों ने फ़ील करना है कि कुछ बर्तरियर फील करनी है, कुछ हम लोगों ने ऐसा फ़ील करना है कि हाँ जी हम इंसान हैं और बेहतर इंसान हैं, हम बाकी सारे दिनों में ये प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। तो मैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ। एनीवेज़ आज एक अफजल तरीन जो है वो दिन है और हम सारे लोग जो हैं उस आज के अफजल दिन के सदक़े जो है एक दूसरे के दुआ करें, अल्लाह जो है हम सब के जो है ज़िंदगियों को आसान करें, हमारे गुनाहों के कफारे के लिए दुआ करें, और ये दिन बड़े ख़ास हैं, आज शाम तक मगरिब के बाद जो है और मगरिब तक बहुत सारी दुआएं करें, मेरे लिए भी दुआ करनी है, ठीक है मैं तो कर ही रही हूँ तो मेरे लिए भी दुआ करनी है, एक दूसरे की दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और सारे लोग जिनको हज की फसीलत नसीब की है अल्लाह ने उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और जो रह गए इंशाल्लाह अगले साल, जो अभी नहीं हुआ वो बाद में हो जाएगा और जो बाद में नहीं हुआ फिर बाद में हो जाएगा, इंतज़ार नियत सब अच्छा रहे ना तो अल्लाह रास्ते सारे बना देता है, सो इंशाल्लाह अगले साल, राइट। अच्छा कमर्शियल है बट एक मिनट, कहीं हमने गुजार तो नहीं दी, 5:30 ना, ओके नहीं है, ऑलराइट जी, हियर आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग, और नो नो नो नो नॉट दिस वन।

है कि एक चीज याद आ गई मुझे कि हम लोग जब सब्जी खरीद रहे होते हैं ना तो हम लोग ना उसमें से अच्छी अच्छी सब्जी अच्छे अच्छे फ्रूट और वो सारी चीजें ना निकाल रहे होते हैं और खराब और वो जो थोड़े से दागी और इस तरह की चीजें होती है वो वहीं पे छोड़ देते हैं एंड वी बिलीव इट कि अब वो यहाँ पे रेडी पे या कहीं से भी आप खरीद रहे हैं वो उधर ही रहना है बस मरते दम तक अब वो जो चीज आपने छोड़ दी है वो उधर ही रहनी है. लेकिन आपने गौर किया है कभी वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में जो है वो वापस आ रही होती हैं समोसे आलू चाट चिप्स और व्हाट नॉट पता नहीं किस किस तरह से फ्रूट चाट और पता नहीं क्या क्या तरह से वही खराब चीजें जो है आप खा रहे होते हैं तो सम टाइम इस तरह होता है कि बहुत सारे काम बहुत सारी चीजें आपने बहुत सारे लोगों को आप अपनी जिंदगी से ना ग्रेजुअली निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार गंदे लोग हैं खराब लोग हैं इनके साथ मतलब गुजारा नहीं होगा या इनके साथ मतलब मैच नहीं हो रही और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से वो लोग जो हैं आपके रास्ते में आते जाते हैं. फिर बंदा कहता है यार इसको एक और चपेट लगाओ इसको दौर लगाओ ताकि ये और ज्यादा साइड पे हो जाए. मैं इस चीज़ को इसलिए सोच रही हूँ मैं कहती हूँ यार ये जो चीज़ें अक्सर हम खराब समझ के छोड़ देते हैं उनका होता क्या है एंड देन वी फीलिंग लाइक ओके ठीक है इट्स गेटिंग बैक. और कभी कभी सारी खराब चीज़ें आपके पीछे पीछे वापस आ रही होती है वो आपके लिए नहीं उनके लिए कोई सबक होता है ग्रेजुअली वो सबक सीख रहे होते हैं कि अच्छा चलो ठीक है ओके अभी नहीं सीखा थोड़ी देर के बाद सीख लेंगे नो प्रॉब्लम. आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके पीछे आएंगे फिर आप थोड़ा सा डांटेंगे फिर आप समझाएंगे फिर उसके बाद वो लोग कहेंगे अच्छा रुकेंगे थोड़ी देर फिर सोचेंगे फिर उसके बाद वापस चलना शुरू हो जाएंगे. आई मीन व्हाट नहीं ये मेरी मिसाल मजे की थी बहुत वैसे ना सर. डबल 4 7 1 ओके चलो आप लोगों की मैसेजेस शामिल करें वरना आप लोग सोचेंगे कि शिवा जो है भूल गई ना ना ओके तो ये कौन है ओ इतना लंबा मैसेज कौन है अरे भाई इतना लंबा मैसेज तो नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है कौन है सो कौन है यार नाम नहीं है ओके कासिम ओके कासिम वो कासिम पुराना वाला हमारा रेगुलर लिसनर कासिम कासिम अल्लाह के बंदे तुम्हें क्या हो गया है. अस्सलाम वालेकुम शिबा जी और सारे पाकिस्तानियों के लिए दुआ है और अल्लाह सबको सलामत रखे और बहुत दिनों के बाद शिबा जी शो में आया हूँ. ज़िंदगी बहुत ही बुरी चल रही है और तफसीलन आपको बताऊँगा ये मैसेज जो मैंने दो किए हैं इसमें मैंने अपनी मुश्किल जो है वो आपको बयान की है. अगर हो सके तो मेरी कुछ मदद कीजिए क्या करूं मैं अरे कुछ दिनों के बाद तुम आए हो और वो भी इतनी टेंशन लेके आए हो और इतना लंबा मैसेज तुमने किया है. तुम्हें पता है ना कि ये मैसेज जो है 4471 पे जो है वो पैसे लगते हैं. तुमने इतने लंबे लंबे नावल लिख दिए हैं अल्लाह के बंदे मैसेंजर पे मैसेज कर देते हैं. जरियोन ने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम शिफा मलिक कैसी हैं आप और बड़ी खुशी हुई आपकी आवाज़ सुन के. क्या ईद पे आपने शो करना है ओ यस ईद पे शो करना है मैंने ईद के दोनों दिन शो होगा कल जो है सुबह 11 बजे और परसों जो है शाम को 5 बजे सो तीनों दिन हमारी मुलाकात होने वाली है. बतूल ने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम प्यारी राज दुलारी कैसी हो यार गर्मी ने तो जान ली हुई है. हाँ सिर्फ तुम्हारी ली हुई है हमारे तो मज़े हैं हमारे तो लोशे हैं. अभी जब मैं आ रही थी वल्ला आते आते ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या ही करूं मतलब पैदल चलना शुरू कर दो किसी रिक्शे में बैठ जाओ किसी बाइक पे बैठ जाओ किसी गाड़ी में बैठ जाओ किधर बैठे किसी तहर भी चैन नहीं आता है वो चैन कहाँ है जो आ जाए इस गर्मी में. और अभी तो जस्ट बिगिनिंग 3 महीने हैं अभी हमारे पास. शिबा मैंने सुना है कि तुम जा रही हो हैं किसने तुम्हें कहा कौन झूठी खबरें फैला रहा है और इस तरह की कोई भी खबर होगी तो आई माई सेल्फ आई एम गोइंग टू टेल यू ठीक है मैं खुद बता के जाऊंगी हमने कौन सी कोई चोरी की है कि हम ऐसे भाग जाएंगे. शिबा ना यार ये ना करो ओके कौन यार दिल बड़ा दुखा है. बतूल ने मुझे बतूल के साथ कब मैं बैठी हूँ यार तुम लोग पता नहीं समरीन दोनों पता नहीं क्या करती रहती हो ये झूठी झूठी अफवाहें उड़ाती रहती हो ना तुम लोग थोड़ा सा बच के रहो ओके. एहतशाम ने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम शिबा कैसी हैं आप और बड़ी खुशी हो रही है आपकी आवाज़ सुन के ये तो और भी अच्छी बात है कि आप कल भी शो करेंगी और परसों भी शो करेंगी ओके चले हमारी ईद अच्छी हो जाएगी.
ईद पे क्या क्या तैयारियां हैं? कुर्बानी का जानवर लेना है, गोश्त जो है इकट्ठा करना है या गोश्त जो है वो बांटना है? इसके अलावा आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे, लाइव कॉल्स लेंगे 6 बजे के बाद। अली रजा, तुम चाय नहीं पिलाओगे आज, यानी ये तय है कि तुम भी चाय नहीं पिलाओगे। ओके, तो कॉफी पिला दो।

दिस सॉन्ग, फिर उसके बाद आप लोगों के मैसेजेस फेसबुक पे शामिल करेंगे. ये कौन है? जुरियन कह रहा है हा हा हा, क्या बात है शीबा मलिक आपकी, आप तो बातें करने में बड़ी माहिर हैं. तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्यों शो कर रही हूँ?

सिस, वेलकम बैक. ओके, हम 5:42 हो चुके हैं. अल्लाह वल्लाही, एनी टाइम इज़ रनिंग. ज़रियोन कह रहा है कि शिबा, आज फेसबुक वालों को रहने दें, आप 4471 वाले जो हैं उन पे सिर्फ तवज्जो दें. अच्छा, ओके, ठीक है. कितना महंगा मशवरा है बाय द वे ये, क्योंकि सस्ती चीज़ों को तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ. ओके, बतूल कह रही है कि यार शिबा, ये बिनिश कहाँ पे उड़ी हुई है, कोई खबर है उसकी? नहीं यार, नाउ बिनिश, अगर ये तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही हो ना, तो वाला ख़त्म करो इसको, ठीक है? अब मुझे भी परेशानी हो रही है कि सब ठीक है ना. कासिम ने मैसेज किया, जी जी शिबा मैं वही हूँ, हाँ मुझे समझ आ गई है और मैसेज मैंने देखा है, बट अब इसको ना मैं शो के बाद ज़रा तफसीली देख लूँगी कि क्या हुआ है, बट अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह तुम्हारी तमाम मुश्किलात जो हैं वो आसान करें, आमीन सुम्मा आमीन. अच्छा चलो भाई, चल पड़ो, मेहरबानी करो, ये मैं नेट को कह रही हूँ. अच्छा जी, मलिक वसीम अवान ने मुंडा सियालकोटी, वो जिसने लेटर पे लिखा था, ओके, माशाल्लाह बहुत उमदा प्रोग्राम है, तमाम सुनने वालों को सलाम. और मुंडा सियालकोटी मलिक वसीम अवान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद बेशक जी. आरजे साबिर है हमारे साथ, वेलकम, आपको भी खुश आमदीद आरजे, या सिर्फ शौकिया आरजे नाम लिखा है, साथ लगाया हुआ है. अलरहमान है भक्कर से, बहुत शुक्रिया जी, आप भी शो में शामिल हैं, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद. हेलो हेलो स्वीट मैम, माय रिस्पेक्टेड मैम, क्या हाल चाल हैं आपके, कैसी हैं आप? ईद मुबारक एडवांस आपको और हमारी पूरी ग्रुप टीम को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक. खबर तुम्हें भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, तुम ठीक ठाक हो? फिलहाल चांद रात. इताशा कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शिबा जी, कैसी हैं आप और सब दोस्त कैसे हैं? उनसे पूछो, मुझे क्या पता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ताहिर अब्बास है, नाइस शो, थैंक्स अ लॉट. मैं रेगुलर शो सुन लिए, मैंने अवार्ड भी बनता है, वाह वाह. तेरे निक्के निक्के चाह और ये ख्वाहिशात, तुम्हारी खबर, इन्हीं ख्वाहिशात के चक्कर में लाहौर छोड़ के चले गए तुम. आ जाओ दोस्तों, हमारी बेस्ट आरजे का शो शुरू होने लगा है. ओके, ठीक है, थैंक्स लॉट इजाज फॉर ऑल दोज वेलकम एंड मैसेजेस. अच्छा जी, मोहम्मद हफीज़ हैं, आपको भी बहुत खुश आमदीद. अच्छा जी, मुल्तान से, बड़ी गर्मी है, मुल्तान की गर्मी है, मुल्तान के मैंगोज. किंग फजल हैं, ओके जी, क्वाइटा से हमारे साथ, ओके, और बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए मैम. लव प्लेलिस्ट एंड स्वीट वॉइस, 2015 से, कसम से, सच्ची मुच्ची, ओके, 15 से नहीं समझ आई, 15 में नहीं, 15 में तो मैं नहीं शो कर रही थी, वो जो ऑन एंड ऑफ आगे करती थी वो भी नहीं. अस्सलाम वालेकुम, कराची से अकबर हैं हमारे साथ, तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम, सिर्फ खूबसूरत समातों को, बाकी सारे क्या करें फिर. आयशा शहजादी है, अस्सलाम वालेकुम आपी जान, क्या हाल है, ठीक है आप, तबीयत कैसी है आपकी? मैं जुलेखा शहजादी लाहौर से बात कर रही हूँ. ओके, ठीक है जी, मैं भी शिबा मलिक लाहौर से बात कर रही हूँ.

मेरी तरफ से, अच्छा इनकी तरफ से कुछ इन्होंने सलाम भेजे हैं। और अच्छा जुलेखा शहजादी, सबको जो आपने सलाम भेजा है मेक श्योर कि वो मेरे शो में हैं, शो में शामिल हैं, तो फिर मज़ा भी आएगा तुम्हें भी मैसेज करने का, मुझे भी नाम पढ़ने का मैसेज आएगा। नाइस जीपी एंड नाइस शो एंड नाइस टॉकिंग, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो इसी की खुशी में अब शरबत भी पिला दो मुझे, इतनी तारीफें करती हैं तुमने। अच्छा जी सबा है, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, और सदके आवाज़ सुन के दिल को सुकून हो गया, ओ सो स्वीट, अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दें, आमीन, सलामत रहें, अल्लाह तुम्हें भी बहुत सारी खुशियों से नवाजें, आमीन, बहुत सारा प्यार और दुआएं आपके लिए, ओ आई एम टच्ड, हमारे लिए भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। रियाज भट्टी हैं शादरा से हमारे साथ, और सलाम अलैकुम प्यारे पाकिस्तान, ओके रेडियो नाइस शो, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।

Okay, this song, why this song? Why this song is coming to my way? Don't disturb me. खबर मुझे याद आ गया है कि हम लोग काफ़ी दिनों से उसको याद कर रहे थे ना, वो वाले गाने को. तो मैं सोच रही हूँ कि आज ना वो वाला गाना हम प्ले कर ही दें. पता नहीं क्यों ऐसे शरारत सी आ रही है मेरे दिमाग में. मैंने सोचा इसको प्ले कर ही देते हैं आज. जिन लोगों ने नहीं सुना ना, हम अक्सर जिस गाने का जिक्र करते हैं वो ये गाना है. और अक्सर हमने जब किसी को कुछ कहना नहीं होता ना, उसको जवाब नहीं देना होता, तो हम सिर्फ ये गाना डेडिकेट करते होते हैं. सो अगर आप लोगों ने नहीं सुना, जो सारे नए लोग आए हैं ना, सो टेक इट नॉट लाइक यू नो नेगेटिव, नहीं उसको लेना. हम सिर्फ फन करते हैं, शुगल करते हैं, ठीक है. पर ये गाना जो है ना, इसको गौर से सुनना है आपने.

छोड़ गया अच्छा हुआ, कभी कभी किसी का जाना जो है आपके लिए सच्ची मुची बरकत हो जाता है और कभी कभी किसी का आना जो है आपके लिए बरकत हो जाता है. यू नो सम पीपल आर कमिंग इन योर लाइफ एज ब्लेसिंग और सम आर लेसन्स, और ये हम सबको पता है. एनीवेज जी, आज जो है वी आर सेलिब्रेटिंग चांद रात, और सारे लोगों को पता है कि आज का दिन जो है बड़ा खासम खास है, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अफजल तरीन दिन है. और हज का जो दिन है और वो असार कुर्बानी, वो जज्बा, वो दुआएं, वो सारी जो चीज़ें होती है ना, वो फील करने से ही सिर्फ नहीं, उसको महसूस करना ही नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ये वो दिन है जब सच में इंसान अपने रब के सामने जो है खड़ा होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा होता है, जब अपने टूटे हुए दिल, अपने टूटे हुए ज़िंदगी का जो बोझ है वो सारा अपने रब के सामने आंसू बहा के जो है वो बता रहा होता है, जिक्र कर रहा होता है. और फिर रब की तो क्या बात है, वो फिर आपको सच में अफजल दर्जा देता है, आपको बनाता है, आपको फिर से चलना जो है वो सिखाता है, खड़ा करता है और बार बार खड़ा करता है, और वो आपको बताता है कि कितने ही लोग क्यों नहीं हैं तेरे इर्द गिर्द जो गिराने के लिए, फिक्र ना कर मैं तेरे साथ हूँ. मैं हमेशा एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जब मैं बहुत बहुत बहुत भी परेशान हूँ ना, और लिटरली मेरे साथ कोई भी ना हो, फिर भी मेरे दिल में एक सुकून रहता है हमेशा. मुझे पता होता है कि रब की ज़ात मेरे साथ है, उसने नहीं मुझे छोड़ा. और फिर मैं ये भी बिलीव करती हूँ, हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि प्रॉब्लम्स का जो सलूशन है, मसलों का जो हल है, उसी मसले में ही होता है. वो वक्ती तौर पे हम बड़े पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती करना क्या है, बट थोड़ा सा काम डाउन हो, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद ना, हमें उसी मसले के अंदर से वो सलूशन नज़र आ रहा होता है कि आप कहते हो ओहो ये तो बड़ी आसान सी चीज़ थी. तो अल्लाह करे आप सबकी लाइफ में इस तरह की आसानियां जो हैं वो रहें. आमीन सुम्मा आमीन. अच्छा ओके, मैसेजेस शामिल कर लेते हैं. अच्छा ज़रियोन ने मैसेज किया है और एहतशाम ने, दोनों का एक जैसे ऑलमोस्ट मैसेज है कि गाना तो बड़ा ही अच्छा है. हाँ हाँ हाँ, क्या बात है शिबा जी, कहीं हमारे लिए तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं. हाँ आपने खुद फील कर लिया तो और बात है, आप चोर की दाढ़ी में तिनके हो जाएं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने किसी को नहीं कुछ कहा. नहीं, मैंने आपको पहले कहा है जिस खुले दिल से सुने, ये तो मतलब एक ऐसा गाना है कि जो हम हमेशा फ़न के लिए यूज़ करते थे एक वो, और एक जब हम तंग होते हैं ना किसी से तो फिर हम नाम नहीं लेते, फिर हम इस तरह के गाने डेडिकेट कर देते हैं. मेरी जॉब ऐसी है, ये और श्रीका नु अग लग दी, आई मीन नो हो जस्ट फन. अच्छा जी, बतूल कह रही है कि यार अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है, पता नहीं किधर है ये लड़की और क्यों है. ओके अच्छा, सॉन्ग है डेडिकेट टू मी, पाइया चूड़ियाँ मैं आज सतरंगिया माइया तेरे वेखन नू. अच्छा ओके, ये गाना ठीक है. 6 बजे के बाद कोशिश करेंगे रिक्वेस्ट लें और कॉल्स लें, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, हाउ यू फीलिंग टुडे, वेलकम टू द शो मुल्तान फरहान. ओके Alright, I'm perfectly alright Farhan, you tell me, how are you feeling, how's your family, how's the preparation for Eid? आया ना मजा, बहुत दिनों के बाद खबर ये गाना सुना है हम लोगों ने इकट्ठे साथ, तो अच्छा ही लग रहा है. आज हमने नए आने वालों को भी सुना दिए, नेक्स्ट टाइम आप लोगों को हो ना कि आपको किसी पे गुस्सा है तो बस आप कहेंगे फ्लां गाना फ्लां को डेडिकेट कर दें, बस कोई भी और बात करने की जरूरत ही नहीं है. सपा कह रही वाह क्या गाना है, बहुत अच्छा शो करती हैं आप, आपकी बातें बहुत मज़े की होती हैं. थैंक यू सो वेरी मच शिबा, आप अच्छा. हाय ये सॉन्ग बनता है मैम जी, इतना रश है शॉप पे कि बाहर भी आपका शो सुन रहा हूँ. वॉइस लाउड वॉइस में प्लेलिस्ट मज़े की होनी चाहिए पंजाबी म्यूजिक वाली. अच्छा ओके, फिलहाल तो न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक के बाद जो है प्लेलिस्ट चेंज करेंगे, साथ साथ आप लोगों की पसंद के जो है वो गाने लगाएंगे, लाइव कॉल्स लेंगे, आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या चल रहा है, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस ईद. ठीक है, कुर्बानी का जानवर जो है आपने ले लिया है, और जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है प्लीज़ सिर्फ अपने लिए ना कीजिएगा, और किसी दूसरे के जज्बात कुर्बान मत कीजिएगा, ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, और ये देखिएगा कि राइट लेफ्ट जो लोग हैं क्या वो भी इस काबिल हैं कि वो कुर्बानी कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते. यू नो ये जो ईद है ना, ये मोहब्बत असार कुर्बानी बस इसी का नाम है, और अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर चुप करके कमरे से बंद कर लो अपने आप नू, और फिर अपने आप नू है ना कहो कि असं ईद मना रहे हैं, तुम कुछ होर ही मना रहे हो. और वो जो आप कुछ और ही मना रहे हैं वो मैं अक्सर कहती होती हूँ, आप फिर यू नो चलते फिरते क्या हैं. Don't stop the music, Rebo, sing it.
अच्छा मैसेजेस हैं 4471 वाले क्या कह रहे हैं। सिमरीन कह रही है कि अच्छा यार ये बतूल है जो, इसको तो मैं सही वाली फेंटी लगाऊंगी, अब तो छुट्टियां होगी, मुलाकात ईद के बाद होनी है, ऑफिस जाएंगे। तो यार तुमने बताया नहीं था लास्ट टाइम तुम्हारे ऑफिस के जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए थे, सब ठीक ठाक हो गया था? ओके okay.

0: तो फिर ट्यून करना मत भूलना आपकी अपनी आरजे शिबा मलिक को एवरी ट्यूसडे ओनली ऑन एफएम 101 लाहौर।
1: यू आर लिसनिंग टू एफएम 101 अबले बले और शावा शावा।

Alrighty, once again, assalamualaikum and good evening all of you. FM 101.2 Pakistan Lahore से मुझे कहते हैं आपकी आरजे, आपकी होस्ट, आपकी तोशीबा मलिक आपके साथ और लाहौर ऑन है, आप जो हैं वो सुन रहे हैं. 6:07 जो है मिनट हो भी चुके हैं, 7 बजे तक मेरा और आपका साथ रहने वाला है. एक दो गाने प्ले करेंगे, फिर उसके बाद लाइव कॉल्स लेंगे और फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि जो है आप लोगों का जो है दिन आज क्या गुजर रहा है, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ हो रहा है, रेसिपीज़ और फिर उसके बाद पता नहीं व्हाट नॉट. बेचारी ख़वातीन का तो यही आलम रहने वाला है, यू नो. सो मर्दों की अलग तैयारी है, औरतों की अलग तैयारी है. अब ये वो चूड़ियाँ कपड़े वैसी वाली तो नहीं, वैसी वाली वाइब्स नहीं है, कुछ लोगों की स्टिल वैसी ही है. ये सब कुछ डिस्कस करेंगे शो में. सो बने रहिए, चांदरात स्पेशल हम लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से. और शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट, ओके. और उसके साथ साथ जो है आज हज का मुबारक दिन है, सो उस हवाले से हम सारे लोग उन सारे हाजियों को जिन्होंने हज का फरीजा जो है वो अदा किया है, उन सबको हम मुबारकबाद देते हैं. एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि अल्लाह ने आपको जो है इस काबिल बनाया कि आप हज का फ़र्ज़ जो है वो अदा कर सकते हैं और कर लिया है आपने. तो अब कोशिश कीजिए बाकी सारे लोगों के साथ खड़े हों जो लोग चाह रहे हैं कि हम भी ये फ़र्ज़ जो है अपना ये फरीज़ा पूरा करें. तो कोशिश करें कि आपने तो कर लिया, बाकी लोग भी कर लें. अच्छा जी, शीबा जी, सच में नादिर और बिनेश सिस्टर कहाँ हैं? खावर भाई, वेलकम बैक आपको, के खावर वापस आ गए, अच्छा लगा उसके आने पे. ईद पे बस खाना ही होता है, बस तो खाई जाओ. अगर आपने भी कुर्बानी की है, आपके घर अपना भी गोश्त है, फिर हमसायों से भी आ रहा है, तो प्लीज़ अपना ही समझ के खा लेना. फिर ये ना समझ के खाना कि गोश्त बहुत आया हुआ है तो बस. आपको पता है लिटरली बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है, इस ईद के बाद हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं इतना खा खा के. तो मेहरबानी कीजिएगा, पेट आपका अपना है, ठीक है. गोश्त हमसायों से आया, पेट आपका अपना है, ठीक है. इस ईद पे तो बस खाना पकाने की रेसिपीज़ होती हैं, क्या पकाना है एग्जैक्टली. फरहान कह रहा है कि मैम 4471 वालों का सीन ख़त्म कर दें, बेचारे परेशान होते होंगे पैसे लगा के मैसेज करने से. ये तुम दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने पे क्यों तुले हुए हो, क्या सीन है, क्या चक्कर है? अच्छा जी, कोई तैयारी नहीं ईद की, मेरी तो छुट्टी ही नहीं मिली, बिकॉज ड्यूटी करेंगे और बल्कि ड्यूटी इंजॉय करेंगे बिकॉज आई एम इन सिविल एविएशन फील्ड. या और मैम आप बताओ आपकी कैसी तैयारी है ईद की, आई मीन बीफ और मटन की न्यू रेसिपी तैयार की है या नहीं? वैसे सारी रेसिपीज पुरानी है. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जब आप कुर्बानी करेंगे उसके हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें, कल खैर आप लोगों से सुबह 11 बजे मुलाकात हो ही रही है, तो तब भी आप लोगों को रिमाइंडर देंगे कि अलाइशे जो हैं उनको कैसे आपने जो है पूरी सफाई का ख्याल रखना है. जगह जगह जो हैं बैनर्स लग गए हैं, जगह जगह जो है आपकी सहूलत के लिए जो है हमारी CM साहिबा ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है. अब वो उन्होंने अपने हिस्से का काम कर लिया, आपकी बारी है. प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल कीजिए, अपने ही शहर को, अपने ही मुल्क को हमने साफ रखना है, ठीक है. अच्छा जी, बार बार मैसेज आ रहा है कि आएँ इस ईद पर ख्याल रखें सफाई का, और सफाई जो है निसफ ईमान है, आप लोगों को पता है, राइट. ओके ओके, तो अब हम ये वाला गाना लगाने लगे हैं. सो इस गाने के बाद लाइव कॉल स्टार्ट करेंगे. सो स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग आरजे शिवा मलिक FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर.

सो वेलकम बैक ओके जी. सो लाहौर ऑन है विद आरजे शिवा मलिक और आप लोगों से अभी हम लाइव जो है वो बात करने वाले हैं. आप लोग कॉल कर सकते हैं. आज फाइनली कॉल लेंगे. ओके ऑलराइट शिवा मलिक, आप ये क्या है, खाने में क्या पसंद करती हैं? मैं सारी खाने वाली चीज़ें जो है ना वो पसंद करती हूँ. जो अल्लाह ने खाने के लिए बनाई है मुझे सब पसंद है, कुछ कुछ छोड़ के. अब सबको सब कुछ पसंद थोड़ी होता है. बतूल कह रही है कि फरहान ज़्यादा मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी पहले बहुत से आता है. ये तुम्हारी उस बात का जवाब है जो तुम अभी मशवरे दे रहे थे ना कि इनके भी अब ख़त्म करें उनको, 4471 वालों को. वो बेचारे इतने लंबे लंबे मैसेज लिख रहे हैं. कासिम कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे के बाद जो है वो शो सुना है, दिल को थोड़ा सा सुकून आया है और पुराने लोगों से बातचीत हुई है और उसी तरह का माहौल देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, घर वाली फील आ रही है. आई वाह, यही तो हम बोलते हैं. आज मुझे वो गाना क्यों याद आ रहा है, रुलते गए या हुआ है. समझ नहीं आ रही ये गाना मुझे क्यों याद आ रहा है. अच्छा ओके, आई डोंट नो वेदर आई एम गोइंग टू प्ले और नॉट, बट याद आ गया मुझे. बट मेरे साथ ये वाला भी सीन है ना कि अगर मुझे याद आ गया तो फिर मैंने प्ले तो करना ही करना है. हाँ तो फिर मैंने पूछा क्यों है, बताया है, पूछा नहीं. एहतशाम क्या कह रहा है कि शिबा कहाँ से लेके आई हो ये दिमाग. अच्छा जागे भी है और ये खरे जवाब, खरे कौन से, मैं तो मतलब सीधे सीधे बात की है, मैंने कौन सा जवाब दिया. मैं तो वैसे ही आप लोगों की बातों के इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं हम लोग, आपको मजा आए शो सुनने का और अल्लाह का करम है. कुछ लोग तो कहते हैं कि मेरा दिमाग ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं इतना सा पौने पाइया दिमाग है आपका, कुछ लोग तो ये कहते हैं. तुम कह रहे हो कहाँ से लाए हो ये दिमाग. ये तुम्हारी खूबसूरत समातों का कमाल है. अब मैंने साथ खूबसूरत इसलिए लगा दिया, थोड़ी सी मैंने कहा अपनी भी तारीफ़ कर लें और तुम्हारी भी कर लें. ओके सिमरीन कह रही है कि यार शिबा ये जो ऊट पटांग किस्म की अफवाहें उड़ा रहे हैं ना आजकल लोग, इनका किसी तरह कुछ करो यार, इनका मैं क्या करूँ, किसी तरह क्या करूँ बताओ मुझे. 04-2-111-0101 is the number you can call and we are going to talk. ठीक है, हम लोग बात करेंगे ईद पे. इस ईद पे आपकी क्या तैयारी है, क्या प्रेपरेशन है और उसके हवाले से जो है आज वेरी इम्प्रेसिव डे, आप सारे लोगों को पता है कि आज का दिन है और इसके बारे में भी बातचीत करेंगे. सो लेट्स सी कॉलर कौन है हमारे साथ. अच्छा ये जो बदतमीजियाँ करने वाले लोग हैं ना, प्लीज़ रज़ा ज़रा देखना कि कौन है जो इस तरह मिस कॉल्स वगैरह आए ना एक से ज़्यादा बार, तो ज़रा प्लीज़ ध्यान रखना. ठीक है जी, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं. लाहौर ऑन है विद आरजे शिबा मलिक और आप लोगों के साथ साथ मैसेजेस शो में शामिल कर रहे हैं. ओके कासिम कह रहा है बहुत बहुत शुक्रिया शिबा हौसला अफजाई के लिए, सच में दिल खुश हो गया, आपको क्या बताऊँ. मैंने पढ़ लिए मैसेजेस, ठीक है, अभी न्यूज़ में मैंने पढ़ लिया था तो देख लिया मैंने और अल्लाह सब ठीक करेगा, अल्लाह पे भरोसा रखो. जहाँ पे इतना बर्दाश्त किया, इतना सब्र किया, ये तो छोटी सी बात है, अब तो कोई बात ही नहीं है. वो क्या कहते हैं, हाथी गुजर गया उसकी दुम रह गई है, कुछ वैसे वाला सीन है ना. तो बस अब ऐसा ही होगा, अल्लाह तुम्हारी दिल की मुराद पूरी करे और तुम्हारे दिल को सुकून दे, खुशी दे, इत्मीनान दे. आमीन सुम्मा आमीन. ओके फैंटास्टिक सुपर एंड ऑल दैट. ये वाला सबसे मज़े का हैप्पी डांस लगता है मुझे, इजाज़ सारे जितनी भी वो इमोजेस आते हैं ना सबसे मज़े का मुझे वही लगता है.

0: let's see, caller kaun hai? Hello, assalamu alaikum. Hello. Hello, aapki awaaz nahi aa rahi. Shi shi ki sirf awaazein aa rahi hain. Hello. Hello, assalamu alaikum.
1: Walaikum assalam and assalamu alaikum FM 101 Radio Pakistan se aapko welcome khush aamadi ji ayanu ahlan wa sahlan marhaba bali kari ayanu te
0: pakhair raage okay
1: kaisi ab bhi aap shukar hai aapko bhi hum jaise callers pe tars aaya
0: kyun maine kya kiya hai ko to wahan facebook pe nahi shamil nahi ho sakte ho tum log hain calls hi kare
1: aap calls nahi leti na isliye keh rahi
0: kyunki facebook hai 447 wale hain to facebook pe aa jaya karo main isliye wahan pe zyada balki maza aata hai wahan pe aapke sare messages sath sath shamil ho rahe hote hain
1: तो वहाँ पे मैसेजेस होते हैं ना आपसे बात नहीं ना होती आपकी
0: तो ये मेरी आवाज है सुन तो रही होती हूँ ना मैं ही बोल रही हूँ यहाँ पे कोई और बोल रहा है
1: नहीं जो कॉल पे बात का मजा है वो वैसे सुनने में थोड़ी मजा आता है
0: ओह माय गॉड फिर शोक सुनती क्यों आपको
1: सुन सुन के हम भी तेज हो गए थोड़े
0: तेरी खैर
1: मुझे हमारा देख
0: क्या हमारा और वो तेजी आई क्या है पहले ये बताओ जरा मैं भी देखूं वो तेजी आई क्या है कितना तेज हुई हो तुम
1: टक टक टक टक टक वाले जवाब
0: अच्छा ओके जिस पे ये लोग कह दें कि जुबान बड़ी चलती है ना
1: कहते वे जो कहता है
0: हाँ तो और क्या फिर कहते रहे इंसानों की
1: इंसानों की अपने खर्चे तो कर दे रहे जो भी कर दे रहे और हाँ, आप भी कैसी हैं ठीक है
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हमारा तुम ठीक हो क्या तैयारियां हैं क्या सीन है
1: अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयारी है शेरू भी तैयार है
0: अच्छा ओके ठीक है गुड
1: और सब खैर है सब ठीक ठाक बहुत अच्छा लगा सब सुनने वालों को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक और हज की बहुत बहुत मुबारकबाद दुआओं में याद रखिएगा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपसे बहुत सारी बेस्ट विशेस सलामत रहे खुश रहे आबाद रहे लेकिन अपने खर्चे पे अल्लाह हाफिज
0: हाँ तुमसे तो मैंने जेब जेब पॉकेट मनी मांग ली है ना अपने खर्चे पे
1: ओके बाय
0: साथ साथ आप लोगों से बात करेंगे कॉल्स लेंगे हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम
2: क्या हाल है
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक कौन और कहां से
2: मैं आयशा फ्रॉम लाहौर
0: आयशा आयशा क्या हाल है
2: मैं ठीक हूं अल्लाह का शुक्र आप कैसी हैं
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक आयशा मुस्कुरा के बात कर रही है ना आज फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने कहा आज मैं कॉल करी
2: वैसे दिल करा था मैंने काफी अर्से से रेडियो पे कॉल नहीं की ना मैंने कहा यार आज मिला ही लेते हैं
0: बहुत अच्छा किया आज वैसे भी दिन अच्छा है ना
2: और आप सुनाएं कैसी हैं
0: बस ईद की
2: तैयारी कैसी है
0: ईद की तैयारी तो आप लोगों के साथ ही गुजरेगी कल का दिन भी आप लोगों के साथ परसों का दिन भी आप लोगों के साथ तुम बताओ तुम्हारी क्या तैयारी है क्या सीन है
2: ईद की तैयारी से ज्यादा मतलब अभी तो मैं अपने भाई की शादी की तैयारियों में लगी हुई
0: अच्छा ईद के फौरन बाद है
2: नहीं नहीं ईद के बाद नहीं है बट मतलब ये रमजान मुहर्रम के बाद है
0: अच्छा ओके ठीक है
2: बट आपको पता है फिर घर की शादियां एक भी नहीं है
0: लड़कियों की तैयारियां पहले शुरू हो जाती हैं हाँ हाँ करो करो
2: मेरी मेरी एक्चुअली नंद की भी शादी है भाई की पहले भाई की है फिर नंद की शादी है
0: ओके डबल डबल खर्चे और भरपूर तैयारियां तो ठीक है तुम वही करो तुम्हारा वही बनता है
2: ईद की ईद तो क्या था एक सूट सी लिया बस ठीक है मैं मेरा बेसिक था ना टारगेट वो मेरे अपने दूसरे कपड़ों में था
0: ओके गुड तो चलो दबा के करो खर्चे और मजे करो एंजॉय करो और क्या यही कह सकती हूँ एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग फर्स्ट टाइम आपसे बात
2: हुई सबको ईद मुबारक एडवांस में और आपको भी
0: थैंक यू डार्लिंग
2: अल्लाह
0: हाफिज़ और नंबर है सो ईद पे क्या तैयारियां हैं क्या सीन ऑन है आप लोगों का वो बताना है और यहाँ पे तो शादी की तैयारियां चल रही हैं आई वाज एक्सपेक्टिंग के गर्ल्स आर कमिंग टू से दैट हम तो रेसिपीज जो हैं वो देख रहे हैं कि क्या पकाना है क्या करना है हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम कौन और कहाँ से
3: आफिया खान लाहौर से।
0: आसिया
3: आफिया
0: आफिया
3: आफिया खान लाहौर से, कैसी है आफिया?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। आफिया आप बताओ, आप कैसी हैं? आपसे भी फर्स्ट टाइम बात हो रही है, राइट?
3: जी फर्स्ट टाइम है।
0: खुश आमदीद, वेलकम। क्या हो रहा है?
3: हंसी आ रही है।
0: तो हंस लो, हंसने पे कोई पाबंदी नहीं है, दिल खोल के हंसो।
3: अभी आपसे गुजारिश है।
0: क्या गुजारिश है? क्या
3: सॉन्ग प्ले कर देगी मेरे लिए?
0: कौन सा सॉन्ग?
3: वे मैं चढ़ के मुसल्ले सत्य समाना दे थल्ले।
0: ओके, तो तुम मुझे सीधा बोल देती कि तुम गुनगुनाना चाहती हो, मैं वैसे तुम्हें कहती आफिया गा दो। मतलब क्या सीधा बोलती कि आप ही मैं आके आपके शो में गाना गा दूं? ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच आफिया।
3: प्ले कर देना और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, एडवांस ईद मुबारक।
0: ओके थैंक यू।
3: पाकिस्तान जिंदाबाद, 101 जिंदाबाद।
0: थैंक यू, थैंक्स डार्लिंग।

फिलहाल जो है मैं एक्चुअली जो है कमर्शियल वो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कमर्शियल का वक्त जो है वो होने वाला है. ब्रेक ज़िंदगी में ज़रूरी है ना, कुछ कुछ जगहों पे. कुछ लोगों को हर टाइम ही लगता है ब्रेक बहुत ज़रूरी है, उनको लगता है सिर्फ ब्रेक ही ज़रूरी है. ओके हियर वी गो, वेयर इज़ दैट कमर्शियल, आई वांट टू प्ले दैट. अभी 2 मिनट हैं तो कॉल ले सकते हैं. 111-000-101 इज़ नंबर, आप लोग कॉल कर सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं. ईद, इस ईद पे आपकी तैयारियां कैसी हैं, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ रियली गोइंग ऑन, तो आप लोग शो में शामिल हो सकते हैं. ओके व्हाट इज़ दिस, ऑलराइट हियर वी गो.

0: अच्छा गाने जो है मैंने क्यों कर दिए हैं, बिकॉज दो मिनट है उसके बाद, बल्कि एक मिनट है, कमर्शियल है, कमर्शियल के बाद जो है वो गाना लगाऊंगी, क्योंकि गाना फिर बीच में फेड करना पड़ेगा तो उसका मजा नहीं आएगा, तो वो फिर लगाएंगे। तो आप लोग आ सकते हैं, जिन लोगों को बड़ी बेताबी रहती है, बड़ी बेकरारी रहती है कि जी कॉल्स नहीं ले रही, एक मिनट है, एक मिनट में अगर आपने बात करनी है तो फिर ठीक है, मैं लाइव कॉल ले लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है आपकी तरफ।
2: We will be right back after a short break. Stay tuned.
3: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
4: सुनते रहिए एफएम 101.1।
5: तेरह जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
6: दिस इज एफएम
5: 101.1। सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

0: All right. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम
1: जी, क्या हाल चाल है?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन
1: पहचाना?
0: खबर खबर, क्या हाल चाल है?
1: जी मैं अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए आप.
0: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक. खबर, तुम तो बिल्कुल ही वो गायब ही हो गए. कैसी जिंदगी गुजर रही है, क्या हो रहा है?
1: बहुत अच्छे गुजर रहे हैं. बस मसरूफियात इतनी थी, इतना मसरूफ हो गया कि मैं लाइव हूँ या होती है तुम?
0: लाइव.
1: अच्छा लाइव. मैं मसरूफियात इतनी हो गई थी कि बस क्या बताऊँ मैं आपको.
0: अच्छा तो लाहौर से जाने के बाद जिंदगी कुछ आसान हुई?
1: हाँ अब आसान है, अब पहले से काफी बेहतर है.
0: चलो दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है. खुशी हुई मुझे ये जान के,
1: क्योंकि मैंने बहुत बेहतर हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ.
0: चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है. और क्या हो रहा है?
1: बस यही शौक है, अपना काम है और इधर ही हम इंजॉय कर रहे हैं, आपका शो सुन रहे हैं और इतना रश लगा हुआ है कि ऊपर छत पे आगे मैंने आपसे बात की है कॉल पे.
0: अच्छा ओके गुड. हाँ मैंने कॉल्स भी काफी टाइम के बाद ली हैं.
1: सही ना, मैंने कहा आज मैं कॉल ले रही है तो क्यों ना आज कॉल जरूरी है, बात करनी है.
0: ऐसे ही है. सही. और फैमिली ठीक ठाक है?
1: जी सब ठीक ठाक है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं.
0: चलो दैट्स ग्रेट, वेरी गुड. अच्छा लगा खबर बात करके. अपना ख्याल रखो, खुश रहो.
1: इंशाल्लाह हम आपके साथ साथ और इंशाल्लाह रहेंगे.
0: इंशाल्लाह ओके. अल्लाह हाफिज़.
1: ओके.

0: अच्छा जी, मैसेज है एहतिशाम कह रहा है कि अशीबा आपका बीजीएम बहुत अच्छा है. ओके थैंक यू सो वेरी मच. क्या खाती हैं जो इतना प्यारा बोलती हैं? हाँ वो एक चीज़ कागज़ पे लिखती हूँ मैं, प्यारा बोलना, और मैं वो कागज़ ही खा जाती हूँ. फिर लोग कहते हैं मैं उल्टे जवाब देती हूँ. नहीं, मैं उल्टे जवाब नहीं देती, सवाल ही बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, फिर उनके इंटरेस्टिंग जवाब ही देने पड़ते हैं. बतूल कह रही है कि शिबा शो सुपर है, और यकीन मानो सिर्फ इतनी सी फिक्र हो रही है कि यार कल सारा दिन किचन में गुजरना है, ठीक है, इसके अलावा और कोई तैयारी नहीं है. ये बहुत अच्छी तैयारी है तुम्हारी, ये जो सारा दिन तुम्हारा किचन में गुजरना है ना, ये बहुत अच्छी तैयारी है. इससे भी अच्छी कोई तैयारी हो सकती है? ओके कासिम कह रहा है मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, दिल बुझ गया है शिबा, क्या बताऊँ आपको, अल्लाह खैर करे, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा. जहाँ पे हमें लग रहा होता है ना हम मायूस हो गए हैं, जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि मेरी बस हो गई है, यकीन माने वहाँ से अच्छा टाइम शुरू होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको लग रहा होता है और आप शॉक्ड हो जाते हैं. शायद फिर ये आज का टाइम तुम किसी दिन किसी को बताओगे कि एक टाइम आया था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कि मुझे लगा कि सब ख़त्म हो गया है, और वहाँ से ही नए सिरे से ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट हो गई, और अल्लाह ने मुझे बहुत खुशियाँ दी. वो अक्सर हम बात करते हैं ना कि यार पुराना टाइम याद करके जो है हमें हंसी आएगी, तो यकीन मानो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह. इजाज़ कह रहे हैं शो का बहुत मज़ा आ रहा है. ओके मोहम्मद शेर ने मैसेज किया है, कौन सी नशरियात को मैं ठीक करूं? ओके ठीक है, हमारी नशरियात तो ठीक चल रही है, आप जो नंबर बता रहे हैं उनको कॉल करें, मतलूबा नंबर पे कॉल करें, ये गलत नंबर पे आप मैसेज कर रहे हैं. इतना गुस्सा है आपको कि आपको ये भी समझ नहीं आ रही कि मैं मैसेज कहाँ कर रहा हूँ. ये रेडियो पाकिस्तान है, ये एफएम है, आपको लग रहा है कि आप उधर करें, उधर कॉल करें प्लीज़. जो लोग लाइव बात करना चाहते हैं, शो में शामिल होना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम. 111-000-101 इज़ अ नंबर, यू कैन बी पार्ट ऑफ द शो, और आप लोग जो हैं शो में शामिल हो सकते हैं. हम बात कर रहे हैं आज जो है, ऐसे सारे लोग जिन्होंने हज के फरीजे को अदा किया उनको बहुत बहुत मुबारक हो. आपकी ईद की तैयारियाँ कैसी हैं, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके एहतशाम ने फिर मैसेज किया है, हाँ हाँ मुझे पहले ही पता था ऐसा कोई फ़नी जवाब ही आएगा, लेकिन अब हम आपके जवाब को बहुत इन्जॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है. और ये बात भी सच है कि दुनिया तो वैसे ही सड़ी हुई रहती है, तो कोई ना कोई ऐसा लम्हा होना चाहिए जिससे हम मुस्कुराएं और किसी दूसरे के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाए. आई वाह, बड़े सवाब का काम होता है ये, हर किसी के बस की बात भी नहीं है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो कौन बात कर रहा है और कहां से?
1: सगीर अहमद बात कर रहा हूं.
0: कौन?
1: सगीर अहमद.
0: सगीर क्या हो रहा है? सगीर
1: बात की कल की तैयारियां कर रहे हैं, कल जाने की.
0: क्या तैयारियां हो रही हैं?
1: छुरियां तेज करवाने आए हैं.
0: अच्छा छुरियां तेज करवाने आए हैं.
1: हां जी बस माड़ी मद्दों की क्या तैयारियां, बस ये कल की तैयारियां कर रहे हैं कल जाने की.
0: क्या तैयारियां हो रही हैं?
1: छुरियां तेज करवाने आए हैं.
0: अच्छा छुरियां तेज करवाने आए हैं.

और अच्छी बात यह कि कुछ मर्द जो है उनकी भी रेसिपीज होती हैं, वो भी बनाते हैं अच्छा खाना, मजेदार खाना, वो कहते हैं इस बार हम भी बनाएंगे. शकीर थैंक यू सो वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. और कुछ कहना है? ओके, अल्लाह हाफिज़.

जब ना इन्होंने कोई गाना गाना होता है ना, तो वो भी डायरेक्ट उस बंदे को नहीं, इसी तरह के गाने बना बना के और भी बहुत सारे लोगों की दिल की जो हसरत है उसको पूरा कर देते हैं बात बात में। वो जैसे अभी हमने प्ले किया था, जाने वाला सांप है। अच्छा ओके शिवा जी, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो इन एडवांस। अगर कल शो ना सुन सका तो मुझे बहुत अफसोस रहेगा, और क्या आपको अफसोस होगा? आप क्या चाहते हैं, मैं झूठ बोलूं? क्या आप झूठ सुनना चाहते हैं? आपको अच्छा लगेगा झूठ सुन के? कभी कभी कुछ झूठ जो है वो भी बड़े मीठे लग रहे होते हैं, सुनने में भी अच्छे लग रहे होते हैं। हमें पता होता है वो झूठ है, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ये इंसानी फितरत है कि हमें इस तरह की सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती है, जो हमें पता होता है कि झूठ भी है। और ऐसे थोड़ी जो गलत काम है इंसान उसमें करता ही चला जाता है, सारी चीज़ें गलत ट्रैक पे अगर चल रहा है तो चलता ही जा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही होती, बिकॉज उसकी एक उसका एक अपना टेस्ट है, उसकी एक अपनी लज्जत है और उसका अपना अपना ही एक मज़ा है। फिर जब उसको ठोकर पड़ती है ना आगे से, फिर समझ आती ना। एंड ये आपको मैंने नहीं कहा, ये मैंने वैसे जनरली बात की है। अहमद ने मैसेज किया है, शिबा क्या सीन है, हाउ अबाउट योर लाइफ, मूविंग ऑन और स्टॉप और क्या? मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, शुक्र है, करम है अल्लाह का, और जिंदगी में सुकून आ गया यार 3 साल पहले। ओके ग्रेट, मुझे याद है हम पुराने स्टूडियो में थे, 3 साल हो भी गए हैं। ना करो यार, टाइम इज रनिंग, इट्स फ्लाइंग, आई डोंट नो। अच्छा जी, तो अब मुझे ये गाना नहीं प्ले करना, बट वाई दिस सॉन्ग इज क्रॉसिंग माई वे, आई डोंट वॉन्ट टू। अच्छा चलो ठीक है, ओके। क्या मैंने ये गाना प्ले किया था रजा? नहीं,

जाने का वक्त भी हो गया, पता भी नहीं चला, और इट्स नाइस आज आप लोगों से लाइव भी बात होगी. कल 11 बजे मेरा शो है, 11 बजे हम लोग मिलेंगे ईद स्पेशल और आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे. परसों भी शो है लेकिन शाम को. सो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अब कल ही मुलाकात होगी. यौम अरफा आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, हज का मुबारक दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और सारे लोग जो हैं एक दूसरे को दुआओं में याद रखेगा. एक ये चीज़ है जो फ्रीली आप किसी के साथ किसी के लिए कर सकते हैं और किसी को दुआओं में याद रख के, सवाब इसका अलग है. और एक ये चीज़ है जिसका अजर, जिसको कहते हैं ना रिवॉर्ड जो है, वो आप किसी इंसान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. किसी के लिए दुआ करते हैं तो उसका अजर आपको अल्लाह ने देना है, और इंसान होते हुए जो है हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि किसी के लिए दुआ करें, दुआ में किसी को याद रखें. बस हम अपने लिए आसानियाँ पैदा कर रहे होते हैं. एंड डोंट वरी, अगर आज का दिन जो है आपका बुरा रहा है, कल आने वाले दिन, कल परसों तरसों और आने वाले दिन अल्लाह आपकी ज़िंदगी में अच्छे लेके आए. आमीन सुम्मा आमीन. और प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक डेडिकेटिंग टू ऑल ऑफ यू. अगर किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो आई डोंट नो, बट मुझे याद नहीं है अगर रिक्वेस्ट भी की थी तो. बिकॉज जब लाइव कॉल ले रहे होते हैं ना तो फिर रिक्वेस्ट रह ही जाती है. सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिए, अपने चाहने वालों को भी, प्यारों को भी याद रखिएगा. नाउ आरजे शिबा मलिक की साइनिंग ऑफ. डू टेक केयर ऑफ अवरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़ एंड हट्स ऑफ लट्स.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org.
0: There's music and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं. 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या,

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

यूं तो उनसे और मिलना होता हमारा, और क्या, और क्या होता क्या हुआ, ये बातें बहुत अच्छी लगी।

मैं समंदर के किनारे पर था और हवा बहुत ठंडी थी। वो हवा थी या मेरी मोहब्बत का कोई गुजरता पहर था जो मुझे नापसंद था। इस बात का जवाब तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें।

कुछ दिल में रह गया कि अब दिल की सुनूं तो सिर्फ मेरी आवाजें गूंजती हैं। वो जा रही थी और हाले दिल आंखों से बह रहा था। हाले दिल का एक लम्हा मेरी आंखों से होता हुआ मेरे जूते पर जा गिरा। वो जूता आज भी मैं पहनने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
2: आप सुन रहे हैं FM 101. सुनते रहिए FM 101. 101.

सौ सलीबें थी हर एक हरफे जुनून से पहले, क्या कहूं अब मैं, कहूं या ना कहूं से पहले। वल जनाब, मुझे कहते हैं ज़ियान जुम, और आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। वैसे तो चांद रात छोटी ईद के ऊपर होती है प्रॉपरली, जिसमें हम एक रात पहले चांद देखते हैं और अगले दिन ईद होती है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम को भी हम चांद रात शो कहेंगे या नहीं कहेंगे, मैं सोच विचार कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अक्सर दोस्तों के और अक्सर जगहों से मुझे मैसेजेस और व्हाट्सएप मिल रहे हैं, जिसमें मुझे चांद रात की मुबारकबाद दी जा रही है। सिलसिला तो कुछ यूं ही है कि सुबह ईद है और इस वक्त मैं भी आ रहा था, तो रास्ते में मुझे बड़ी गहमा गहमी, बड़ी हलचल सी नज़र आ रही थी, और ख़ास तौर पे सड़कों पर इस वक्त बड़ी रौनक है। और जो एक मंज़र जो बार बार देखने को मिल रहा था सड़कों पर, वो ये था कि हर गुजरती हुई एक दो गाड़ियों के बाद कोई ना कोई लोडर रक्षा, कोई ना कोई लोडर वैन, जिसके ऊपर कोई ना कोई कुर्बानी के जानवर जो हैं वो अपनी अपनी मंजिले मकसूद तक जा रहे थे। और तो और, अभी आते हुए माल रोड के अंडरपास में मैंने दो ऊंट भी गुजरते हुए देखे, जो मेरी तरह अंडरपास से ही गुजर रहे थे। क्या बात है। ये भी एक सिलसिला है जी। बहरहाल जी, ईद के दिन शुरू हो चुके हैं, प्रॉपर शुरू हो चुके हैं। अभी हम रात मना रहे हैं, जिसको हम चांद रात भी कह सकते हैं, और चांद रात ही कह लेते हैं। तो कहिए सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सबको बताता चलता हूँ कि मेरा नाम ज़िया अंजुम है। हर मंगल और जुमे को रात 12 से 2 आपके लिए प्रोग्राम हरफे जुनू लेकर आता हूँ, और आज का ये प्रोग्राम हमारा चांद रात को उतरा है। मुझे आने में थोड़ी सी देर होगी, लेकिन बहरहाल आपकी मोहब्बत है, चाहत है कि आप अभी भी सुन रहे हैं। यूं तो इस वक्त मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं जो कि ख़ास तौर पे कुर्बानी कर रहे हैं, या जो लोग कुर्बानी नहीं भी कर रहे, हर तरफ गलियों में एक बड़ी ही रौनक का समा है, क्योंकि हर गली में कोई ना कोई जानवर बंधे हैं कुर्बानी के। और बच्चे क्या, ख्वातीन क्या, यंगस्टर्स क्या, हर कोई जो है वो जानवरों के इर्द गिर्द मंडला रहा है और देख रहा है। लाहौर में तो कम से कम अभी तक रात नहीं हुई, और होता यूं है कि ईद की रात हो तो तकरीबन सुबह तक जागकर ही गुजरती है। यकीन जाने मैं खुद अभी बाजार से आ रहा हूं शॉपिंग्स करवा के। ओए ये भी बड़े सिलसिले होते हैं। वेल जी, आप आइएगा प्रोग्राम में, बात करते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं ईद के हवाले से, ईद की यादों के हवाले से। आज मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक हुआ हुआ था। मैं सोच रहा था कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो ईदें हुआ करती थीं वो किस तरह से हुआ करती थीं, और क्या क्या चीज़ें हम लोग अपने बचपन में इंजॉय किया करते होते थे। चीज़ें कुछ तो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, कुछ वही की वही हैं, और कुछ बदली हुई चीज़ें जब याद आती हैं जो कि उस ख़ास दौर का हिस्सा होती हैं, तो भी एक बड़ी अजीब सी, एक मज़ेदार सी फीलिंग होती है। कभी हम खुश भी हो जाते हैं उन यादों को याद करके, और कभी हम थोड़े से सैड भी हो जाते हैं कि यार वो वक्त क्यों गुज़र गया। बहरहाल यादें जो होती हैं वो बड़ी ही मज़ेदार होती हैं, मैं ये समझता हूँ, और ख़ास तौर पे जो किसी दिन त्यौहार के साथ जुड़ी हुई याद हो। मुझे याद है कि आज से तकरीबन, बल्कि मुझे देखना चाहिए,

जी हाँ, मुझे याद है कि ईद के ही दिन थे और मैं पहली दफा, अब मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं है कि बड़ी ईद थी कि छोटी ईद थी, लेकिन बहरहाल आपको पता है कि जब भी ईदें आती हैं तो ईद पे कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली फिल्म ईद के ही मौके पे देखी थी और मेरे घर वाले बड़े सख्त थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो हम कुछ कज़न्स ने और कुछ दोस्तों ने मिलके प्रोग्राम बनाया कि हम जो है ना जाके फिल्म देखेंगे और सिनेमा में देखेंगे, और हमने घर वालों को नहीं बताया था और शो भी हमने रात का देखना था, ये जो मेरे ख़्याल से 7-8 बजे शो लगता है। और अहमद बट पाकिस्तानी एक हीरो हुआ करते थे जिनकी शादी हुमैरा अरशद जो एक सिंगर हैं उनसे हुई थी, उनकी पहली फिल्म आई थी 2004 में सलाखे नाम से। तो मैं और मेरे कुछ कज़न्स और कुछ दोस्त हम मिलके पैसे इकट्ठे करके, ईद का शायद पहला दिन था या दूसरा दिन था, हम वो रात का पहला शो देखने गए थे, रात का शो देखने गए थे, और वो पहली फिल्म थी जो मैंने सिनेमा में देखी थी। और मुझे याद है इधर ही यहाँ पे लक्ष्मी चौक के पास एक सिनेमा हुआ करता था, शबिस्तान सिनेमा। अब तो शायद उस तरह से नहीं है, शबिस्तान था कि गुलिस्तान था, मेरे ख्याल से कोई था, कोई स्थान था। तो वहाँ पे वो पहली फिल्म देखी थी और आज मैं सोच रहा था कि अभी भी लगती हैं फिल्में, अभी भी उस तरह से एक सीन और सिलसिला होता है, लेकिन उस वक्त जो मूवीज़ देखने का क्रेज़ हुआ करता था सिनेमाज़ में जाके, वो एक अलग तरह का एक मज़ेदार सा एक सीन हुआ था। अब तो मेरे ख़्याल से सिनेमाज़ भी बड़े बदल चुके हैं, बड़े मॉडर्न हो चुके हैं, बड़े हाई फाई हो चुके हैं। बहरहाल जिस तरह से मुझे आज ये याद आ रहा था, तो आप भी बताइएगा कि ईद से जुड़ी हुई कोई याद हो आपकी, कोई बचपन की याद हो, कोई पुरानी याद हो, जो जब भी कोई ईद आती हो तो आपको वो वाली याद ज़रूर आती हो या आपको उस दौर में ज़रूर लेके चली जाती हो। तो इसी तरह की कुछ बातचीत गुफ्तगू हम करने वाले हैं। मैं आपके साथ कुछ छोटे छोटे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा कि किस तरीके से मेरी ईदें गुजरी और ईदों से वाबस्ता मेरी क्या क्या यादें रहीं। आप भी आइएगा, बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कैसा लगता है। कुछ याद भी है कि अभी आप छोटे से प्यारे से चुन्नू मुन्नू से बच्चे हैं, अभी आप खुद बचपन गुजार रहे हैं। वैसे मुझे यकीन है कि मुझे बच्चे नहीं सुनते रेडियो पे, मुझे सुनने वाले जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो मेरा ख़्याल से 25 साल से 35 साल या 40 साल की उम्र के दरमियान में लोग होते हैं जो मुझे सुनते हैं। तो मैं आपसे आपके बचपन के हवाले से पूछता हूँ कि आपकी क्या ईदों से ख़ास तौर पे वाबस्ता कोई याद हो, बड़ी स्पेशल हो, बड़ी ईद से भी रेलेवेंट हो सकती है, वो छोटी ईद से भी रेलेवेंट हो सकती है, चांद रात से रेलेवेंट हो सकती है, लेकिन वो कोई बचपन की याद होनी चाहिए जो स्पेसिफिकली ईद के साथ जुड़ी हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार सिनेमा में जाके जो पहली फिल्म देखी थी सलाखे नाम से, 2004 में ये फिल्म आई थी, अहमद बट इसके हीरो थे और हीरोइन इसकी थी ज़ारा शेख। बड़ी मज़ेदार फिल्म थी, मुझे अभी भी इसकी काफ़ी कहानी याद है। और मुझे याद है उस वक्त मेरे ख़्याल से सिनेमाज़ में नया नया वो सिस्टम आया था, वो जो डुबली या डोबले सिस्टम होता है जिसमें ना सराउंड होके आवाज़ आती है। तो उस फिल्म के अंदर एक सीन था कि एक फ़ोन की घंटी बजती है और मैं फटाफट मुड़ के सीटों के पीछे देखने लग जाता हूँ कि किसका फ़ोन बज रहा है। उस वक्त मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे तो मुझे लगा कि शायद पीछे कोई फ़ोन पड़ा हुआ, लेकिन वो सीन के अंदर ऐसे था कि उस सीन में बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द वो जो POV होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो बंदे की पिछली साइड पे फ़ोन बज रहा था, तो उन्होंने सिनेमा में भी वो इफ़ेक्ट दिया था कि पीछे से फ़ोन की आवाज़ आ रही है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ था। कैसी कैसी चीज़ें हुआ करती थी, अब हम सोचते हैं तो।
बहरहाल आप आइएगा बताइएगा। और ईद के हवाले से हम बात कर रहे हैं, चांद रात के हवाले से बात कर रहे हैं, कुर्बानी के हवाले से बात कर रहे हैं, कुर्बानियों में होने वाले दिखावे के हवाले से भी बात कर रहे हैं। दिखावा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहले भी था शायद, लेकिन अब तो दिखावा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इख्तियार कर चुका है। तो इस पे भी आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं, इस पे भी हम बात करेंगे कि कुर्बानी जो है वो क्या लोगों के लिए है, समाज के लिए है, माशरे के लिए है, क्या कुर्बानी कोई स्टेटस सिंबल है, क्या कुर्बानी कोई शेखी मारने की कोई चीज़ है, या फिर कुर्बानी खालिसतन अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में। कुर्बान करने वाली कोई चीज़ है क्या, ये दिखावे की कोई चीज़ है या फिर ये सुन्नत इब्राहिमी है, क्या समझते हैं आप? इन सब चीज़ों पे हम गुफ्तगू करने वाले हैं। देखते हैं कि अब आने वाले दोस्त आके हमारी गुफ्तगू के इस रिधम को, इस धारे को किस तरफ मोड़ते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, 04221000101 पे आप हमें कॉल करेंगे। इसके साथ साथ आप हमें 4471 पे SMS कर सकते हैं। मोबाइल से टाइप कीजिएगा 101 स्पेस देके अपना नाम और पैगाम लिखिएगा, 4471 पे भेजिएगा। फेसबुक पे आइएगा, सर्च कीजिएगा FM 101 लाहौर, हमारा ऑफिशियल फैन पेज मिलेगा, यहाँ पे भी आके आप प्रोग्राम के हवाले से, ईद के हवाले से, चांद रात के हवाले से, बचपन की ईदों के हवाले से या किसी भी हवाले से आप बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, कुछ सवाल हो तो कर सकते हैं, कुछ जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। ईद के हवाले से कोई अच्छा सा शेर, कोई नज़्म, कोई गज़ल जहन में आ रही हो, ईद के मौके पे कोई बिछड़ा हुआ साथी, कोई दोस्त, कोई यार, कोई सज्जन, कोई राहत जान, कोई दुश्मन रूह याद आ रहा हो तो उसके मुतल्लिक भी बात की जा सकती है। कितनी बातें हैं जो की जा सकती हैं ईद के हवाले से, कुछ चीज़ों के हवाले कितने ज़्यादा निकलते हैं, निस्बतें कितनी निकलती हैं। मैं जानता हूँ कि इस वक्त बहुत सारे दोस्त बड़े खुश होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, और वहीं पे बहुत सारे सुनने वाले या ईद मनाने वाले बड़े उदास भी होंगे, और उदासियों की कई लाख वजूहात हो सकती हैं। आइएगा बताइएगा, बात करते हैं, बात करेंगे तो बात बनेगी, बात करेंगे तो बात से बात निकलेगी। जुगनू जूनियर हैं, सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? महजबीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों? चांद रात मुबारक, खैर मुबारक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ईद के ऊपर वैसे मौसम कैसा रहने वाला है? मैं देख रहा था, आज सुबह देख रहा था मेरा ख्याल से, तो वो बारिश की भी कोई फोरकास्ट बता रहा था। अब बारिश होती है, नहीं होती, थोड़ी थोड़ी सी होती है या फिर गरज बरस के साथ होती है, लेकिन अगले कुछ दिनों में हैं तो सही बारिशें। मौसम भी अपनी अजीब सी आंख मचोली खेल रहा है, समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। एक दिन अचानक से शदीद गर्मी होती है, धूप होती है, बाहर निकलना मुहाल हो जाता है, अगले दिन ऐसी खूबसूरत हवाएं चलती हैं, नेरियां चालनियां ने, फिर बारिश भी हो जाती है, कभी खुल के हो जाती है, कभी एक छट्टा सा पड़ता है। मौसम भी जिस तरीके से खेल खेल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे दिल के मौसम होते हैं, कुछ पता नहीं चलता, अचानक से यूं सर्द हो जाते हैं और अचानक से यूं गर्म हो जाते हैं। वो वसी शाह का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, इश्क दे अपने वखरे मौसम,
इश्क दे अपने वखरे मौसम, ठंडा जून ते गरम दिसंबर। होता है ना, कभी कभी जून भी बड़ा सर्द हो जाता है और कभी कभी दिसंबर भी बहुत गर्म गुजरता है, बिल्कुल दिल के मौसमों की तरह। बहरहाल बात कर रहे हैं हम कुछ चांद रात पर, ईद पर, बचपन पर, यादों पर, नॉस्टैल्जिया पर। आइएगा, बात कीजिएगा, गुफ्तगू कीजिएगा। एक ट्रैक प्ले करते हैं और आज मेरे ख्याल से अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा लो नहीं करना चाहिए, टेम्पो को थोड़ा सा चुक के रखना चाहिए। ईद का मौका है ना, क्या ख्याल है? इस ट्रैक के बाद मिलते हैं, सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं, क्या ख्याल है? इस ट्रैक के बाद मिलते हैं, सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे।

रहने वाला है पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ पे भी हमें सुना जा रहा है, आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। आज हम बात कर रहे हैं कुछ बचपन के हवाले से, ईदों के हवाले से, और ईदों के हवाले से जो बचपन की यादें हैं। तो आइएगा, बताइएगा कि आपकी क्या क्या यादें हैं। आपकी कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स का सिलसिला भी लेते हैं।

0: वेल जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला लेते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ अब और कौन कौन मौजूद हैं और इनका क्या क्या कहना है, और लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपके?
0: ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं?
1: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लाहौर से रिमशा।
0: रिमशा ठीक हैं? ईद कैसी, ईद की तैयारियां कैसी हैं?
1: बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या हो रहा है, क्या क्या ईद की तैयारियां चल रही हैं?
1: अभी अभी तो मैंने सूट इस्त्री किए हैं।
0: अच्छा, क्या बात।
1: भाई का किए हैं और अपने किए हैं, मामा का किए हैं।
0: ओके, तो ईद पे आपको नया सूट पहनने का मौका मिल जाता है बड़ी ईद पे?
1: लेकिन बड़ी ईद पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक तो छोटी ईद पे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इस पे घूमने जाना होता है छोटी ईद पे, क्योंकि एक ऐसा कुछ होता नहीं है। बकरा ईद पे ये होता है कि भाई जगह जगह फ़ोन होता है, फिर बाहर जाने का मन नहीं करता और सूट पहनने का मन नहीं करता, काम करते करते सारा वक्त गुजर जाता है।
0: ओहो, कितनी मजबूरियाँ हैं ना, कितने दुख हैं, कितने गम हैं।
1: बिल्कुल, इतने ज़्यादा दुख है, हमें बेचारी खवातीन को किचन से जान ही नहीं छूटती है।
0: सही हो गया, ठीक हो गया,
1: क्योंकि जो सबका कल से टाइम।
0: अच्छा, मुझे बताओ कि ईद के हवाले से कोई बचपन की याद है?
1: जी बिल्कुल है।
0: क्या है?
1: मेरी जो मतलब बचपन की जो याद है, मेरे बाबा की साथ ही गुजरी है।
0: आपके बाबा की?
1: मेरे बाबा के साथ गुजरी है।
0: ओके,
1: वो याद ऐसी है कि जब भी छोटी ईद आती थी या बकरा ईद आती थी ना, तो मेरे बाबा मुझे चांद रात बड़े दिन भी बाइक पे लेके जाते थे और बाथरूम आते थे।
0: अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त।
1: और वो रात बहुत अच्छी गुजरती थी, और उस रात में हम लोगों ने बाहर रैक्से में खानी, बाबा कहते थे कि अपनी मन पसंद चीज़ बताओ जो तुमने खानी है, वो चीज़ खानी। फिर इसी तरह करते करते टाइम वेस्ट हो जाता था, बाहर घूमते घूमते बाबा मुझे लेके जाते। वो याद मेरी सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो बाबा के साथ गुजरी गया।
0: तो क्या खाती होती थी ज़्यादातर?
1: ज़्यादातर जो मेरे बाबा मुझे खिलाते थे, मैं कतलम्बा बहुत शौक से खाती हूँ।
0: वाह, ईद पे कतलम्बा।
1: तो कतलम्बा
0: अच्छा, ये कतलम्बा तो ज़्यादातर होता है मेलों वगैरह पे?
1: नहीं नहीं, ये आपको लाहौर में शाक बाग में मिल जाता है।
0: अच्छा, मिल जाता है।
1: जी जी, क्योंकि मेरे बाबा के एक दोस्त थे, वो कतलम्बा खुद बनाते थे, तो बाकायदा बाबा मुझे उनके पास लेके जाते थे और वो उनका कहते थे कि यार चलो बना के दो गर्म गर्म, तो वो बना कर देते थे।
0: अच्छा।
1: और बाहर से हमने टिक्के खाने, सीखे खानी मुझे वो याद नहीं भूलती बाबा के साथ।
0: ठीक है, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया।
1: और कल मेरा बहुत खुशी का दिन था, कल मेरा निकाह हुआ है भाई।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो लड़की।
1: खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो।
0: चलो रिमशा, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, थैंक यू सो मच आपने कॉल की, और निकाह की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको।
1: और आपको चांद रात मुबारक हो और एडवांस ईद मुबारक हो।
0: थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: ओके,
0: अल्लाह हाफिज। सैयद शाहिद अली हैं हमारे साथ, सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ईद के हवाले से, चांद रात के हवाले से, और एक काम है जो बार बार ख़राब होता जा रहा है, इसका क्या करना है। एक गाने की तरफ बढ़ेंगे और गाने से वापस आके मैं फिर आपसे दोबारा बातों का सिलसिला यहीं से जोड़ता हूं। आपने कहीं भी नहीं जाना और मेरे साथ साथ यहीं पे रहना, सुनते रहें साथ साथ FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।

0: अच्छा, ईद के हवाले से मेरी एक याद ये भी है, ख़ास तौर पे बड़ी ईद के हवाले से। अब ये सिलसिला काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन पहले ये काफ़ी हुआ करता था। हम कुछ स्कूल के दोस्त थे, और जब भी बड़ी ईद आया करती तो हम में से कोई एक आधा दोस्त हमेशा टिक्का पार्टी किया करता होता था। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि हम बड़ी ईद पे भी जो है वो चिकन टिक्के ज़रूर बनाते थे क्योंकि बड़ी ईद के ऊपर अक्सर ऐसे होता है कि कुछ अक्सर लोगों को बड़े गोश्त से, मटन से और बीफ से खाम खाकी ना एलर्जी होती है, वो नहीं खा पाते, कुर्बानी का गोश्त नहीं खा पाते, तो फिर उनके लिए चिकन भी लिया जाता होता था। और छत पे जाके, मुझे याद है, अब वैसे इस तरह से बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं रहा, लेकिन पहले छतों पे ना जब बारबेक्यू हुआ करते थे या कुछ इस तरह से होती थी, तो ऊंची आवाज़ में ना डेक भी लगाया जाता होता था, गाने लगते होते थे, तो पता चलता होता था कि किसी के घर में ना छत पे कोई टिक्का पार्टी, कोई बारबेक्यू पार्टी या कोई हल्ला गुल्ला, कोई सीन हो रहा है। अब तो लाउड स्पीकर की वैसी पाबंदी है, उस तरह से चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो भी एक बड़ी खूबसूरत सी याद है कि पार्टी हुआ करती थी, बॉयज़ पार्टी हुआ करती थी जिसमें सिर्फ बॉयज़ हुआ करते थे, और सारी रात जनाब टिक्के कम खाने और शुगल ज़्यादा लगता होता था। और अमूमी तौर पे हम लोग जब टिक्के, क्योंकि जितने अनाड़ी होते थे हम टिक्के शिक्के बनाते होते थे, तो सारे टिक्के ख़राब करते थे या तो कच्चे रह जाते थे या फिर वो सड़ जाते थे, जल जाते थे, कोई ना इस किस्म का कांड हुआ ही रहता था लेकिन बहरहाल एक सिलसिला था ईद पे चांद रात के हवाले से। आप बताइएगा आप लोगों की क्या याद है। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें, कहां से?
1: सर असद कोहाट से बात कर रहा हूं।
0: जी असद भाई, क्या कहना चाहेंगे?
1: सर जी, आपने याद की बात की, मेरे तो थोड़ा सा उर्दू में फारसी में फर्क है, लेकिन थोड़ा सा तकरीबन ये 98 की बात है, 99 में मैंने मैट्रिक किया है। सर जी, उस टाइम थोड़ी सी गरीबी थी, तो दोस्तों और कजन लोगों ने बोला कि चलो आज VCR लेके आते हैं। सर जी वो बड़े कैसेट वाले नहीं थे?
0: हाँ।
1: सर जी वो मैंने किसी से उधार लेके उसके साथ प्रोग्राम बनाया, तो उसी रात मेरे एक भाई फौजी फौज में था, तो वो भी छुट्टी पे आया था, तो मैंने घर में बहाना बनाया कि मैं फूफी के घर जा रहा हूँ आज।
0: अच्छा।
1: तो सर जी उसके साथ जब हम बैठक में बैठ गए, आप लोगों उसमें पंजाबी में क्या बोलते हो, डेरा, हमारे छोटे छोटे बैठक होते हैं,
0: बिल्कुल ठीक,
1: उसमें सर जी प्रोग्राम बनाया, तो मुझे पता नहीं था कि फौजी अभी घर से निकलेगा तो उसी बैठक में आएगा। ऐसे घूम के जिस चाचा के घर का घर में बैठक था, प्रोग्राम था, उसी चाचा के घर में आ गया, बोल रहा था हाँ बाहर निकलो। जब मैं बाहर निकला ना सर जी, उधर तो आपको पता है पहले VCR कैसेट जब लेके आते थे तो उसको रिवर्स करना पड़ता था।
0: हाँ।
1: वो हाँ। प्रोग्राम हमने तैयार किया इधर से, सर जी जब उसने निकाला, एक थप्पड़ दिया, दूसरा दिया ना, मैं घर भाग के गया। अम्मी ने बोला कि बेटा आप तो फूफी के घर गया था। मैंने कहा बस फूफी के घर गया तो सुबह बताऊंगा, अभी चुप हो जाओ मां जी। तो सर जी वो प्रोग्राम उधार भी लिया था, वो पैसे भी चले गए, तो दो थप्पड़ भी खा लिया। सुबह जब ना फौजी जब VCR पूरा रात उसने खुद देख लिया
0: अच्छा, जब खुद देख लिया उसने,
1: बोला था हाँ सर मेरी जगह पे वो बैठ गया ना।
0: अच्छा।
1: तो जब आ गया तकरीबन अजानों से पहले घर आया, या मुझे पता नहीं था, मैं तो सो रहा था, जब मैं सुबह उठा बोला था इधर आओ।
0: हाँ।
1: वो उसने खड़ा किया, बोला था वो सिट स्टैंड करो ना ऐसे सर जी।
0: हाँ।
1: वो तकरीबन 10-12 बार मैंने सिट स्टैंड किया, वो सजा दिया, बोला था किससे पूछा था आपने, दोबारा जाओ। कि मैंने कहा बस माजरत सॉरी ये वो। अम्मी ने बोला कि क्यों क्या हुआ बेटा, बोला था अम्मी ये तो VCR देखने के लिए बैठा था उधर। अम्मी ने बोला ना कर बेटा, ये इस तरह का नहीं है, ये तो फूफी के घर गया था। बोला था बस मुझे पता है जो फूफी के घर गया था। तो सर जी ये मुझे 98 की बात है, सन 1998 की।
0: वाह वाह वाह,
1: ये मुझे याद है। और सर जी खैरियत से हो?
0: बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि उस वक्त आप जब VCR लेके आए थे, कितने एक दिन का क्या किराया हुआ करता था?
1: यार सर जी ये इलम नहीं है, मैंने 10 रुपए उधार लिया था, वो भी किसी को बोला था कि अम्मी की तबीयत सही नहीं है, उसके
0: अच्छा।
1: लिए गोली लेके आ रहा हूँ हाँ सर जी क्यों बोलो वो भी उतार पे वो VCR प्रोग्राम के लिए बहाना बनाया था।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया।
1: भी मैंने ठीक है सर, सब सुनने वाले को मुबारक, ईद मुबारक,
0: खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक,
1: बड़ी मेहरबानी,
0: थैंक यू सो मच। अच्छा, पुरानी यादों में बिल्कुल इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। अब ना मूवीज देखना, फिल्में देखना बड़ा आसान हो गया। अब आपके हाथ में मोबाइल होता है, आपके हाथ में यूट्यूब होता है। अब से कुछ अरसा पहले तक, कुछ साल पहले तक बड़ा आसान था। लोग मोबाइलों वाली दुकानों पे जाते थे और वहाँ से अपने मेमोरी कार्ड में चीज़ें फिल करवा के कभी वो मूवीज़ होती थी, गाने होते थे, वीडियोज़ होती थी, तो इस तरह से वीडियोज़ या मूवीज़ देखने का एक ट्रेंड था। लेकिन अब चीज़ें और भी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। अब वाईफाई का दौर है या 4G का दौर है, मोबाइल इंटरनेट का दौर है, और हर किसी के पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन होते हैं। यूट्यूब उसके ऊपर प्ले हो जाता है और बहुत सारी वेबसाइट्स, उनकी सब्सक्रिप्शंस होती हैं, आपके पास नेटफ्लिक्स होता है और इस किस्म की दूसरी हमारे पास स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे मूवीज़ देखना, ड्रामास देखना, नेशनल इंटरनेशनल कंटेंट देखना बड़ा आसान हो चुका है। अब तो घरों में जो टीवी हैं उन टीवियों में भी एंड्रॉयड ऐप्स होती हैं, वहाँ पे यूट्यूब चल जाता है, नेटफ्लिक्स चल जाता है और बहुत सारी दीगर एप्लीकेशन जो हैं वो टीवी पे ही चल जाती हैं। सैकड़ों चैनल्स होते हैं जहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ लगा होता है। लेकिन यकीन जानिए, एक दौर पहले था कि जब फिल्म देखना VCR पे, कैसेट पे फिल्म देखना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी। VCR बहुत कम घरों में अपने जाती हुआ करते थे। ज़्यादातर लोग क्या करते होते थे कि VCR जो है वो रेंट पे लेके आते होते थे एक दो दिन के लिए, और साथ फिर VCR पे ही आपको कैसेट्स में मूवीज़ मिला करती होती थी, स्टेज ड्रामे मिला करते होते थे, तो उसमें लेके आते होते थे और फिर बाज़ुकात फैमिली, दोस्त या कोई गैदरिंग होनी तो मिल के टीवी के ऊपर वो मूवीज़ देखनी। और अब तो हमारे पास बड़े वाइड स्क्रीन और LED टाइप के TVs आ चुके हैं, वो बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। तो पहले वो डब्बे नुमा बड़े बड़े TV हुआ करते थे, और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते थे, चौरस TV हुआ करते थे, वाइड स्क्रीन नहीं हुआ करते थे, और उसके ऊपर वो फिल्म जिस तरह से नज़र आती थी वो एक अलग तरह का टेस्ट होता था। मुझे याद है, पता नहीं आप लोग ख़ासतौर पे जो आज की जनरेशन है उनको तो शायद पता भी ना हो VCR का और कैसेट्स का, लेकिन उस दौर में फिल्म देखना एक बहुत बड़ा एक महाज समझा जाता होता था। और अब तो हम देखते हैं कि बच्चे भी जनाब TV लगा के मूवीज़ देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देख रहे हैं। फिल्म देखना, मूवी देखना बड़ा आसान हो गया, केबल के ऊपर लगी होती है आप देख लेते हैं बैठ के, लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ा महाज हुआ करता था। अच्छा, मुझे याद है कि पहले PTV जब सिर्फ चैनल हुआ करता था तो ईदों के ऊपर जो है स्पेशल फिल्में ब्रॉडकास्ट हुआ करती थी। एक महीना पहले जो है उसका ऐड आने लग जाता होता था कि बड़ी ईद के ऊपर या छोटी ईद के पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन रात को ये फिल्म लगेगी 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे। तो मुझे याद है कि चूड़ियाँ फिल्म मैंने PTV पे देखी थी, जीवा फिल्म मैंने PTV पे देखी थी, सरगम एक फिल्म आई थी वो मैंने इसी तरह ईद पे देखी थी, PTV पे देखी थी, और बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिनके लिए हमें इंतज़ार करना होता था कि ईद आएगी तो ईद के ऊपर फिर रात को, ईद के पहले, दूसरे या तीसरे दिन फिल्म लगा करती होती थी हमारे लॉलीवुड की। एक फिल्म हुआ करती थी घर कब आओगे, आई थिंक शान की थी, और उसका म्यूज़िक भी बड़ा मज़ेदार था। वो मुझे याद पड़ता है कि वो भी इसी तरह किसी ईद पे लगी थी तो हम सारे कज़न्स, बहन भाई इकट्ठे हो जाते थे कि फिल्म आनी है, फिल्म आनी है। फिल्म देखना उस वक्त एक ना बहुत बड़ी एक इंटरटेनमेंट हुआ करती थी। आज के दौर में, आजकल की इस फास्ट टेक्नोलॉजी के दौर में बड़ा इजी है, इसको बड़ा कॉमन सा समझा जाता है कि भी फिल्म लगी है TV पे, चलो बैठ के देख ली। लेकिन उस वक्त फिल्म जो थी ना वो एक बड़ी ग्रैंड स्केल की, एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ थी। सिनेमा में जाके देखना तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था, घर में TV पे लग जाए या VCR से देखना ये भी एक बहुत बड़ा महाज हुआ करता था। عید کے حوالے سے یہ کچھ یادیں ہیں یقیناً ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو کیا یاد یاد ہے چاند رات کے حوالے سے, شاپنگ کے حوالے سے, عید کے حوالے سے کوئی خاص فیسٹیویٹی, تو آئیے گا بتائیے گا اور پروگرام میں شامل ہوں. 04221100101 پہ آپ کی کالز لی جا رہی ہیں. میرے ساتھ کچھ دوست یوٹیوب لائیو پہ بھی موجود ہیں, اور جاوید خان ہیں ہمارے ساتھ, سلام کرتے ہیں, وعلیکم السلام. مسٹر اے ایچ ہیں, سلام کرتے ہیں, وعلیکم السلام. لو یو ضیاء بھائی, لو یو ٹو, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سید شاہد علی کہتے ہیں کہ بہت شکریہ سر, آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے, تھینک یو سو مچ. کال لیتے ہیں جی, ایک اور کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. ریاض انجم صاحب, شہزادے ٹھیک ہو؟ خیر
0: اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
2: سر زندہ دلانے شہر لاہور والوں سے, نون قصوری, نذیر قصوری جی لیمن اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں سر.
0: نذیر قصوری اسلام آباد
2: سے؟ جی جی بالکل, جی جی سر.
0: اچھا, اسلام آباد سے ہو کے بھی آپ قصوری ہیں, کیا چیز آپ کو اسلام آباد لے کے چلی گئی؟
2: قسمت سر.
0: لیکن آپ کا دل جو ہے وہ قصور میں ہی بسا ہوا ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ قصوری لگاتے ہیں, لیکن خود آپ جا کے بس گئے ہیں اسلام آباد میں.
2: ہاں بس یہ ساری قسمت کی باتیں ہیں سر. اب خورشید محمود قصوری چیئرمین اینڈ فارن منسٹر آف پاکستان تھے, تو وہ تو قصوری ہیں نا, ساری زندگی قصوری چلنا چاہیے.
0: تو ہمیں بھی پھر اپنے نام کے ساتھ لاہور بھی لگا لینا چاہیے
2: سر. لاہور لاہور ہی ہے سر, جن نے لاہور نہیں دیکھا جمے ہی کوئی نہیں ہے, بھاویں جتھے مرضی چلا جائے, امریکہ چلا جائے.
0: تو پھر لا لیے سی وی لاہور ہی.
2: ریاض انجم سے اسی, تسی انجم ہو تے انجم تے ستارے ہوندے نے, تے ستارے دنیا دے ہر کونے تے پہنچے ہوندے نے.
0: نہیں اسی تے استارے دی گل کر رہے ہیں, ستارے دے علاوہ
2: لا لو سر. لان نال کیڑی گل جی, مرضی
0: کی لا لو. چاہو گے کی کہنا چاہو گے؟ عید دے والے نال
2: وہ جڑا تسی دسیا نا, مال لوٹ تے اونٹ پھر رہے سن, وہ تو کوئی ایسی انوکھی گل ہی کوئی نہیں. شہزادے وہ 1400 سال پہلے عرباں دے وچ اونٹ جس ویلے انہاں نوں سب تو فیورٹ انہاں دا کیمل ہی گئے جی اونٹ, تے اج اگر مال روڈ تے پھر رہے سن تے وہ تے ماشاء اللہ تہن پتا پاکستان دے وچ بہت اونٹ ہے گئے نا. دوسرا ہے کہ بچپن دیاں یاداں تسی دسیاں, گلستان اور شبستان, سینما اور لکشمی چوک, واقعی جی وہ نہ بھلن والی نے. اسی ایک فلم دیکھنے لی قصور آ گئے سن بس بھول کے.
0: اچھا تسی بھی آندے سے تھے؟
2: ہاں جی سر.
0: کیڑی کوئی فلم ویکھی تے تے اجے تک یاد ہوے؟
2: او تسی تے سلاخیں دیکھی تے اسی زخمی دیکھی سی, ریاض شاہد کا آخری نشتر زخمی.
0: زخمی؟ اچھا اے کدوں دی گل ہے؟
2: سارے زمانہ وہی سی
0: 85 to 90
2: سلاخیں اور محمد علی شاہد ندیم چھائے سن سر.
0: نہیں سلاخیں تو بہت بعد سے آئی فلم سی, وہ 2004 دی فلم ہے, احمد بٹو دا ہیرو سی.
2: اچھا اچھا اچھا. برل سر وہ حافظہ ان وقت دے نال نال حافظہ ان انہیں بدام ہی گئی نہ کھائیے, کی کریے مجبوری.
0: چلیں بہت شکریہ آپ نے کال کی, تھینک یو سو مچ
2: سر. عید تے گوشت جڑا ہے حق داراں چ پہنچانا ضروری جگہ جی.
0: بالکل ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں
2: سر بہت ضروری ہے, کیونکہ سارا ہی فریجاں اگر چلا جائے گا تو پھر وہ نان تک پہنچے گا نہیں, تو سنت ابراہیم کی قصہ پوری ہوگی.
0: بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, بڑا اچھا پیغام دیتا تسی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. جیندے رہو, سلامت رہو, وسدے رہو.
2: ریاض انجم تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, سب کو حج عمرے نصیب ہوں. آمین.
0: آمین جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.

0: ओके जी, कुछ मैसेजेस हैं इनको शामिल करते हैं। जुगनू जूनियर हैं, कहते हैं कि सलाम करते हैं और कहते हैं कि हुई ईद सब ने पहले, नहीं मुझे ये समझ नहीं आया आपने क्या लिखा हुआ है। बहरहाल यासीन शाह हैं, कहते हैं थैंक यू मिस्टर ज़ियानजुम, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया कि आप हैं यहाँ पे मौजूद, हमारे साथ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यासीन शाह कहते हैं ज़िया भाई, मैं टीनेज में था उस टाइम, आपकी पोइट्री बहुत सुनता था, आज पहली दफ़ा लाइव देखता हूँ सऊदी अरब से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी मोहब्बत है, चाहत है। ईद के हवाले से, चांद रात के हवाले से कोई याद हो, कोई बचपन की कोई पुरानी मज़ेदार सी याद हो तो ज़रूर बताइएगा। और हर कोई आके अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, आप भी आके बताएं। मैंने आते साथ ही सबसे पहले बताया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली फिल्म सिनेमा में ईद पे देखी थी। ईद का मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा दिन था, 2004 की बात है। एक फ़िल्म आई थी सलाखें, ये मेरी पहली फ़िल्म थी जो मैंने जाके सिनेमा में देखी थी, और मेरे ख्याल से गुलिस्तान सिनेमा था यहाँ पे लक्ष्मी चौक के पास। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, लाहौर और पंजाब के बहुत सारे ऐसे पुराने एरियाज़, पुराने नाम जिनके नाम अब बदल चुके हैं, जैसे कृष्ण नगर का अब नया नाम इस्लामपुरा हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे पुराने नाम थे जैसे इन सब पुराने नामों को दोबारा से रीस्टोर किया जा रहा है। जैसे धर्मपुरा एक पुराना नाम था, उसका नया नाम मुझे अभी तक पता नहीं चला कि नया नाम क्या था, लेकिन वो जितने भी पुराने नाम थे, ये आज ही मैं एक ख़बर पढ़ रहा था और ये पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो जितने भी पुराने इलाके हैं, पुराने एरियाज़ हैं जिनके ओरिजिनल नाम कुछ और थे लेकिन बाद में किसी भी वजह से उसको बदल दिया गया, तब्दील कर दिया गया, अब उनको उनके दोबारा पुराने नामों से रिस्टोर करने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टेप है। अक्सर तो ऐसे एरियाज़ हैं जिनके नाम बदल चुके हैं, नक्शे पे बदल चुके हैं या ऑफिशियली बदल चुके हैं, लेकिन वहाँ के रहने वाले, वहाँ पे आने जाने वाले लोग अभी भी उसका नाम वही लेते हैं। जैसे लक्ष्मी चौक है, यहाँ पे हमारे रेडियो के करीब ही है, तो लक्ष्मी चौक का नाम भी बदल चुका है, उसका नाम मेरे ख्याल से वो नया वाला नाम भी मुझे याद नहीं है लेकिन वो जाना पहचाना लक्ष्मी चौक के नाम से ही जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे नाम जो पहले कुछ और थे और फिर उनको बदल दिया गया, किसी और नाम से रिप्लेस कर दिया गया, उनके तमाम पुराने नामों को रिस्टोर किया जा रहा है, और मुझे ये ख़बर आज पढ़ के सुन के बहुत खुशी हुई। आपका इस हवाले से क्या कहना ये भी ज़रूर बताइए। एक और कॉल लेते हैं, देखते हैं कि ईद के हवाले से क्या गुफ्तगू होती है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
0: हमीद गुल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
1: आप ठीक हैं? रियाज साहब खैरियत से हैं?
0: अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत से, आपकी दुआएं हैं, कहिए क्या कहना चाहेंगे।
1: वैसे वीसीआर का दौर बड़ा अजीब था ना?
0: अजीब था,
1: बहुत अजीब था।
0: वो कैसे?
1: वो लहरी से किसी ने पूछा आंगन टेढ़ा ड्रामा में।
0: अच्छा,
1: तो फिल्मों में बड़ा असर पड़ा ना वीसीआर के आने से।
0: अच्छा,
1: 90 के दहाई के बाद फिल्में तकरीबन ख़त्म होने शुरू होंगी, तो सुल्तान राय की डेथ के बाद बिल्कुल ही, फिर उसकी जगह शान ने रही। लेकिन बारह वो बुशरा अंसारी ने पूछा कि लहरी भाई वीसीआर जो है इसके आने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? कहते हैं इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, पहले अपनों को नाचता देखते थे, बाहर वालों को नाचता देखते।
0: ये भी सही है,
1: एक एक एक बड़ी अच्छी वो थी। बहरहाल वो दौर बड़ा अजीब था, मैं क्योंकि हमने, आपने तो जिस ज़माने में अपनी फिल्म का जिक्र किया सलाखें का, हमने तो उससे पहले की ना फिल्म मेरी 51 उम्र होगी, 52 हो जाएगी।
0: अच्छा,
1: 3-4 महीनों बाद। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो दौर, उस ज़माने में जो फिल्में आई 1990 की दहाई तक, वो कमाल दौर था। कराची से उर्दू फिल्में आती थी आपके लाहौर पंजाब में, अच्छा। वो जट और गुजर के नाम से फिल्में आती थी, तो वो बड़ा अच्छा था। फिर VCR का दौर भी आया, लेकिन क्योंकि हम ज़्यादातर गांव के रहने वाले लोग थे और मैंने ज़्यादा बेशतर चीज़ें अपने गांव में की। इत्तेफाक की बात है कि हमारे इलाके में स्वाबी में आज तक में कोई सिनेमा बना, और मुझे नहीं पता कि अभी भी शायद केबल बनने वहाँ बहुत सारी जगहों पर।
0: अच्छा,
1: मतलब ये और VCR जो था वो हम अगर लगता था वो हुजरे में, मतलब तो हम अपने हुजरे में लगा लेते थे, और बड़ा उस पर अच्छा, उस पर बच्चों को बैठने की इतनी इजाज़त नहीं होती।
0: बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है।
1: और डर हमें अगर लगता था तो या तो अपने बड़ों से लगता था या बुजुर्गों से, मोहल्ले के बुजुर्गों से। वैसे हमें डर नहीं लगता था,
0: सही
1: मतलब
0: है।
1: ये एक अजीब बात थी कि अगर हमने, मुझे सिगरेट पीने की आदत हो गई तकरीबन 25 साल की उम्र में या 24 साल की उम्र में, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने शायद अपने बड़े भाई के सामने उसकी डेथ होगी सिगरेट लगाऊं। तो एक दिन उसने मुझे कहा, मैं गाड़ी में गांव जा रहा था उसके साथ, कहता है होटल पे रुका तो कहता है यार सिगरेट लगाना है लगा लो। मैंने कहा नहीं, वो कहना मुझे पता है तुम पीते हो लगा लो, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती।
0: सही है,
1: बड़ा एक अजीब सा दौर था वो। अब तो वो चीज़ें अभी आपने जैसे नेट का जिक्र किया और ये आ गया वो आ गया, उस ज़माने में बहुत सारी अच्छा, उस ज़माने में जितने लोगों के पास अपना इल्म था वो ज़ाती इल्म था उसका, यानी बड़ी मेहनत की हुई थी किताबों का आगे भी। अब तो हर आदमी के पास आपको पता है बहुत ज़्यादा इल्म, कुछ भी है तो वो गूगल से आप तलाश कर लेंगे, एक सहूलत होगी। मतलब एक अधूरा इल्म हमारे तक पहुँच रहा है, मैं ऐसा नहीं समझता कि ये मुकम्मल है।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक।
1: ये बातें थी। और एक मुझ में बड़ी शरारती तो मैं बड़ा था, मुझसे मेरे मोहल्ले वाले भी बड़े तंग रहते थे, प्यार भी बड़ा करते थे। मुझे एक आदत थी, मैं लोगों के बल्ब तोड़ दिया करता था।
0: कैसे?
1: एयर गन से।
0: अच्छा, एयर गन से ना बल्ब मैंने भी बड़े तोड़े हुए हैं छतों पे चढ़ के।
1: अच्छा, छतों पे चढ़ के पता नहीं चलता था कितने बेड़े का बल्ब गया।
0: अपने निशाने पक्के करने के चक्कर में ना।
1: नहीं, निशाने बड़े पक्के थे वो। अब क्या, वो मैं आपको बताऊं ना कि वो उस ज़माने में मैं एक दिन छत से, अच्छा मैंने ना एक दफ़ा, हमारा एक दोस्त एक लतीफ़ा बचपन का याद है, मैं इसे लतीफ़ा ही कहूँगा, तो वाकई लतीफ़ा था।
0: अच्छा।
1: उसने कहा यार ऐसा करते हैं, हमारा एक दोस्त था सुहेल नाम था उसका।
0: अच्छा।
1: अभी भी अल्लाह उसको अच्छा रखे। तो कहता यार मुर्गी ना पकाएं, तो मैंने कहा पका लेते हैं, तो क्या करना है, शायद लोग रेडियो पे सुन रहे हो, कोई ऐसा मेरा दोस्त सुन रहा हो। बहरहाल हमारा एक दोस्त था मेहताब, तो उसकी उनके यहाँ मुर्गियाँ बड़ी थी उन दिनों में घरों में सबके पास में। हमने क्या किया, उसकी घर से मुर्गी चोरी की, और आप देखें दिन को ज़िबा करने के लिए मैं मूंगटी पे चढ़ गया।
0: अच्छा
1: अच्छा, मेरे ख्याल से ये सबसे सेफ जगह थी जहाँ से सबको देखा जा रहा है।
0: अच्छा।
1: तो वो जब हमने उसको रात उसको बहरहाल ज़िबा करके, पता नहीं हुई या नहीं हुई या इसी तरह खा के बहरहाल उसको वो साफ सूफ करके, तो वो करीब हमारे सिक्कों वाले से उसके पास ले गए, भाई इसको बना के नहीं आप।
0: हाँ जी।
1: तो जब हम बना रहे थे तो वो मेहताब को जो हमसाया था, तो वो आया कहता है आज बड़ी मुर्गी चुर्गी चले, वो बड़े थे हमसे। कहा नहीं भाईजान, कहता है मैनू पता है मुर्गी कड़ी है।
0: अच्छा।
1: तो वो भी हमारे साथ शरीक हो गए उसमें।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने भी खा ली कि भाई हम राग रखेंगे आपने, हैं वरना हम आपका राग खोल लेंगे। वालिद से तो हम बहुत डरते थे।
0: अच्छा।
1: तो कई दिनों बाद पता लग गया मेरी वालदा को, उन्होंने कहा कि वो हमीद गुल ने और सुहेल ने और नदीम ने, तो मैं मेरी कहती अच्छा कहने ये कि गल कोई बात नहीं, मेरे पास मुर्गियाँ बहुत है, जितनी मुर्गियाँ को भी मैं देने, लेकिन उन्होंने अब्बे ने ना देखने के लिए अबू बड़े साफ अल्लाह जन्नत में लगा दे। ये थी शरारते बच्चे, ये वो बड़ा एक अच्छा शेर है इसी के साथ जाए कि अजब अजब किसी का उस्ताद का शेर है कि अजब लुत्फ था नादानियों के आलम का। आपकी नज़र कर रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत टॉपिक करा कि अजब लुत्फ था नादानियों के आलम का, समझ में आई तो बातों का वो मजा भी गया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
1: अब वो मज़े नहीं है, आज ये नई री जनरेशन जो है इसको क्या बताएं, इन्होंने क्या देखा। वो दौर बड़ा अच्छा था।
0: अमित साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: जज़ाकअल्लाह
0: जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी ओके, हमारे साथ हमीद गुल साहब थे और बड़ी खूबसूरत और बड़ी मज़ेदार किस्म की हमारे साथ नॉस्टैल्जिक बातें शेयर कर रहे थे पुराने वक्तों के हवाले से। अच्छा, मुझे वैसे पुराना दौर, अपने बचपन का दौर बहुत ज़्यादा याद आता है। मैं समझता हूँ कभी कभी मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं वापस उसी दौर में चला जाऊँ। बड़ा सादा, बड़ा एक अलग तरह का वो दौर था। शायद छोटे थे और छोटे होने की वजह से वो फिक्रें नहीं थीं, उस तरह की टेंशनें नहीं थीं। अब क्योंकि बड़े हो चुके हैं और बड़े होने के बाद आपकी सोच, आपके सोच के जाविये, अंदाज़ बदल जाते हैं और अंदाज़ बदलने के साथ साथ आप वो नहीं रहते जो बचपन में आप बेफिक्रे हुआ करते थे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमारे बचपन का दौर, जो मैंने अपना बचपन का दौर 90s में गुजारा हुआ है और फिर अर्ली 20s में गुजारा हुआ है, ये बड़ा प्योर और बड़ा सादा सा दौर था। शहरी ज़िंदगी के हवाले से भी मैं अगर बात करूँ, इस वक्त हमारे शहर की ज़िंदगी बहुत तेज़ हो चुकी है, बहुत फास्ट हो चुकी है। और अब यहाँ पे हम पहले ये देखा करते होते थे कि लोगों को बड़े इलाके में, जो DHA, गुलबर्ग या ऐसे जो कोठियों वाले इलाके हुआ करते थे ना, वहाँ पे लोग ना बड़े इनफरादी तौर पे रहते थे। उनको आपस में आसपास नहीं पता होता था कि उनके हमसाए कौन है, साथ वाले घर में कौन रहता है, वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये हम तब वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया करते थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ज़िंदगी लोगों की बड़ी लिमिटेड सी हो गई है। लोग बहुत इनफरादी हो चुके हैं। वो जो इज्तमाईत थी पहले, जो एक कल्चर था लाहौर के गली मोहल्लों का, मुझे लगता है कि अब वो उस तरह से नहीं रहा जो आज से 20-25 साल पहले जो हमने अपने बचपन में देखा हुआ है। हर किसी की अपनी अपनी यादें हैं, हर किसी के अपने अपने सिलसिले हैं। मैं बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीज़ों पे पहुंच गया हूं और मैं सोच रहा हूं कि कौन सी बात यहां पे शेयर करूं ना करूं। लेकिन बहरहाल आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं, आपकी फ़ीडबैक ले रहे हैं। हमारे साथ YouTube पे भी बहुत सारे दोस्त इस वक्त जुड़े हैं, वहां पे आप लाइव हमें देख सकते हैं। यासीन शाह कहते हैं कि आप लाहौर में कहाँ से हैं? लाहौर में इस वक्त हम FM 101 रेडियो पाकिस्तान से हैं और आप यहीं से हमें देख रहे हैं। जुगनू जूनियर हैं, बहुत शुक्रिया। और का नाम क्या है, मुखर्जी हैं कोई, और कहते हैं आदाब जनाब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, आपको भी हम आदाब कहते हैं। इसके अलावा तमाम सुनने वालों को आप सबका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करें ईद के हवाले से और ईद के हवाले से जो बचपन की यादें हैं उस हवाले से। सजाद अली लाडला कहते हैं कि आपने सही कहा है, दिखावे के लिए अब किया जाता है या स्टेटस के लिए मुकाबला लिया जाता है, तो अल्लाह, मुझे लगता है ब्रो, अल्लाह पाक आपकी नीयत और आपका तकवा देखता है। जब हमारी नीयत साफ और तकवा होगा तो तब ही अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कबूल होगी। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। कहते हैं कि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मुझ तक तुम्हारा गोश्त और ये खून नहीं पहुंचता। मुझ तक अगर पहुंचता है तो तुम्हारी नीयत पहुंचती है। तो कुर्बानी का ताल्लुक जो है वो नीयत से है। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं, अगर आप साहिब कुर्बानी हैं और आप कुर्बानी करते हैं और आप एक नहीं कई कई कुर्बानियां करते हैं, लेकिन उसमें आपका, आपकी नीयत अगर ये है कि मैं कुर्बानी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस मुआशरे में अपने स्टेटस को कहीं ना कहीं कायम रखना है, अगर आप कुर्बानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने रिश्तेदारों में अपना एक भरम रोब दबदबा या कोई भी एक सोसाइटी सिंबल आपने उसको रिटेन रखना है, या अगर आप कुर्बानी इसलिए करते हैं कि आप लोगों को बता सकें कि भाई मैं बड़ा सुप्रीम हूँ, मेरी पावर है, या मेरी देखो बड़ी, लोग ना मैंने देखा है कि बड़ा बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताते हैं। अगर आप आसपास नोट कीजिएगा, कोई शख्स जो कुर्बानी का जानवर लेके आया हो और वो अपनी इस्तेआत और पसली के मुताबिक उस कुर्बानी के जानवर को लेके आता है, और वो जानवर अगर कोई छोटा जानवर है, वो ज्यादा बड़ा जानवर नहीं है, तगड़ा जानवर नहीं है, तो लोग ना उसको बड़ा मायूब समझते हैं कि यार ये आप कैसा जानवर ले आए हैं, इसमें तो गोश्त बड़ा कम निकलेगा, ये तो बड़ा वीक सा जानवर है, ये तो कोई बहुत अच्छी नस्ल का जानवर नहीं लग रहा। गो के कोशिश करनी चाहिए कि आप अच्छी नस्ल का लें, या आप जो है वो हेल्दी जानवर लें, आप ऐसा जानवर लें जिसके जिसमें से गोश्त ज़्यादा निकले। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं ले पाता तो इसमें इसमें कोई कबाहत नहीं है, कुर्बानी उस शख्स की भी कबूल हो जाएगी, बल्कि शायद उसी की कबूल हो, क्योंकि नीयतें तो अल्लाह ताला जानते हैं। हो सकता है कोई ऐसा शख्स जो अपनी तरफ से बहुत महंगा जानवर लेके आया हो, बड़ा तगड़ा जानवर लेके आया हो, बहुत हेल्दी जानवर लेके आया हो, और लेके आके उसने पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में उस जानवर को घुमा फिरा के उसकी नुमाइश भी की हो, और उसका मकसद ही ये हो कि मैं पूरे मोहल्ले में दिखाऊं, पूरी सोसाइटी में दिखाऊं, पूरे आसपास हर जगह पे हर किसी को दिखाऊं कि भाई देखो हम जो जानवर लेके आए हैं, हमने फलानी जगह से जानवर मंगवाया है, ये देखो कितना तगड़ा है, कितना महंगा है, ये देखो इसकी खुराक क्या है, ये कितनी स्पेशल खुराक खाता है, ये कितना जानदार है। तो आपका मकसद फिर शायद यही है कि आप लोगों को दिखा रहे हैं और लोगों को खुश कर रहे हैं और लोगों में अपना रोब और दबदबा डाल रहे हैं, तो फिर इस कुर्बानी का जो मकसद था ना, वो शायद आपका वाला मकसद पूरा हो गया। लेकिन वो जो अल्लाह के नज़दीक, जो अल्लाह को आपका तकवा, आपकी नीयत चाहिए थी ना, वो शायद लोगों को दिखा रहे हैं और लोगों को खुश कर रहे हैं और लोगों में अपना रोब और दबदबा डाल रहे हैं, तो फिर इस कुर्बानी का जो मकसद था ना, वो शायद आपका वाला मकसद पूरा हो गया। लेकिन वो जो अल्लाह

0: इसको दिखाओ पूरे मोहल्ले वालों को, दिखाओ कि हम स्पेशल फलानी जगह से ये बकरे लेके आए हैं, ये गाय लेके आए हैं, ये वैड़ा लेके आए हैं, ये देखो ये ऊंट लेके आए हैं, और फिर उसकी हम नुमाइश करते हैं, नुमाइश करवाते हैं, और फिर हम में से बहुत सारे लोग शेखियाँ भी मारते हैं कि देखो भाईजान हम तो फलानी जगह से लेके आए हैं और इतना महंगा लेके आए हैं और ये तो पता नहीं क्या क्या। कुर्बानी की रूह, कुर्बानी का जो मेन मकसद है वो आप फोत कर देते हैं, यकीन जानिए। अस्मा कौसर हैं, कहती हैं ब्यूटीफुल शो की पीरा भैया, चांद रात मुबारक, और तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जुगनू जूनियर आपका शुक्रिया। आर के मुगल कहते हैं कि धूप थी साएबां था, धूप थी साएबां था ही नहीं, मेरा कोई मकान था ही नहीं, मैं जहाँ जाके लौट आई हूँ उसके आगे जहान था ही नहीं, तुम मुझे छोड़ भी तो सकते हो, ये तो मुझको गुमा था ही नहीं, आप रोए थे क्यों बिछड़ते हुए, अगर कुछ दरमियां था ही नहीं, उस पे सब कुछ लुटा दिया ज़िया, जो मेरा कदरदान था ही नहीं। ये ज़बरदस्ती, ये जो आपने ज़िया लगाया ना बीच में कैसे कर लेते हैं यार। उदास फरी हैं, कहते हैं मेरा नाम हमसा है और ये मेरे मामा की आईडी है। उदास फरी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और इसके अलावा उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथ साथ हैं। आपकी मोहब्बत, चाहत, समात का भी शुक्रिया। एक और कॉल लेते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई?
0: ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: अब हम कौन हो गए, आइसक्रीम कह रहे तो कोई बात नहीं, हमको कौन हो गए जी? आप
0: जी, आप कौन हो गए, आप कौन क्यों हैं,
1: आप कौन है, कहाँ से आए आप? ईद पे आइसक्रीम खाएंगे कि कौन खाएंगे?
0: मैं आइसक्रीम खाऊंगा, 2 लीटर वाला डब्बा।
1: चलो फिर सुबह ले आऊँ तो आप मिल जाएंगे मुझको?
0: कहाँ लेके आएंगे और कहाँ में मुझे मिलना है आपने?
1: स्टूडियो में ही आ गए, जब स्टूडियो में आता हूँ मैं, आप पहचान नहीं रहे मुझको।
0: स्टूडियो में आते हैं आप, कब कब आते हैं?
1: आज वो सालगिरह पे आया था, ईद पे आया था।
0: किसकी सालगिरह पे आए थे?
1: स्टूडियो की, जो 27वीं सालगिरह थी।
0: स्टूडियो की सालगिरह?
1: हाँ जी,
0: स्टूडियो की तो कोई सालगिरह नहीं होती।
1: तो फिर आप भूल गए ना मुझको, कोई बात नहीं।
0: नहीं, स्टूडियो की तो कोई सालगिरह नहीं होती।
1: नहीं, जब सालगिरह मनाई थी, 27वीं सालगिरह।
0: किसकी 27वीं सालगिरह?
1: स्टूडियो में जब आया था मैं।
0: आप स्टूडियो में आए थे, किसकी सालगिरह पे आए थे?
1: आपकी।
0: मेरी सालगिरह पे?
1: आपने बुलाया ही नहीं दादा, अपनी साल।
0: नहीं, मैंने तो कभी स्टूडियो में अपनी सालगिरह मनाई नहीं। शहजाद साहब, अगर कोई आपको नहीं पहचानता तो आपको अपना नाम बताते हुए शर्म क्यों आती है?
1: नहीं, मुझे शर्म नहीं आती, मुझे पता चल जाता है आप पहचान लेते हैं, जान के कर रहे होते।
0: तो अगर जान के कर रहे होते तो आप अपना नाम बता दिया करें।
1: अच्छा, तो मेरा नाम एक और भी चल रहा है आजकल।
0: क्या चल रहा है?
1: मौला जट।
0: क्यों, आप तो कहीं से मौला जट नहीं है।
1: नहीं, मैंने
0: कौन अफवाही उड़ा की,
1: नहीं नहीं, सुल्तान अली साहब की फिल्म में मौला जट बहुत देखी, तो मैं मौला जट की बकायदा पूरी तरह फिल्म पूरी याद हूँ।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो ये आपको तो कहता कौन है मौला जट?
1: सब कहते हैं, मैं प्रोग्राम में पंजाबी में आता हूँ ना, सारे कहते हैं वसीम साहब के प्रोग्राम में। माशाल्लाह, आज तो बहुत अच्छी बात कर दी आपने बचपन वाली, तो जो मेरे साथ बचपन में होया ना वो आपको बताऊं तो आप परेशान हो जाए।
0: नहीं, मैं परेशान नहीं होता, आप बता दें।
1: अच्छा, तो हम जब नानके गए थे ना, उन्होंने बकरा पाला हुआ था, तो मेरे मामू भी, मेरे थोड़ा थोड़ा ही फर्क था, दो मामू मेरे थे, एक मुझसे 2 साल बड़ा था।
0: Okay.
1: वो हम बकरा ले गए घर से, चोरी चोरी लेके चल गए, तो घर वालों को

0: पता नहीं था, हम 5 रुपए का बकरा बेच के जा रहे थे।
1: 5 रुपए का बकरा?
0: हाँ, 5 रुपए का बकरा बेच आए।
1: 5 रुपए का? ये कब की बात है?
0: ये बहुत छोटे होते थे हम, वो मैं होता था को कम से कम ना 10-11 साल का।
1: ये किस सन की बात होगी अंदाजा?
0: ये सन अब मुझे इतने नहीं याद, बराबर ये याद है मुझे।
1: मेरे ख्याल से 1882 की बात होगी।
0: नहीं जी, ये 1971 की तो मेरी पैदाइश है जी।
1: अच्छा अच्छा जी, इतने पुराने हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी, बहुत पुराने। बहुत दफा आपके प्रोग्राम में ना नाक के साफ होके आते, इतने पुराने हैं।
1: वाह वाह वाह वाह। यानी अगर 71 में आप हुए थे पैदा, तो 9-10 साल के होंगे, तो तकरीबन कोई 80 के शुरू की बात होगी।
0: जी जी,
1: पाँच रुपए का भाई, आप छा गए। फिर कोई कुट वुट पड़ी आपको?
0: कुट तो जो पड़ी तो पड़ी थी, बकरा जो ढूंढने निकले फिर।
1: अच्छा,
0: बकरा ना मिला ना वो आदमी मिला जो 5 रुपए में हमसे ले गया। ना बकरा मिला तो उसकी आवाज मुझे आज फिकर याद है, वो जैसे बोलता था ना, वो मुझे आज फिकर याद।
1: बकरे की
0: आवाज बोलता था? हाँ, ऐसे बोलता।
1: सारे बकरे ऐसे बोलते हैं शहजाद भाई?
0: नहीं, वो ऐसे बोलता था।
1: सारे ही ऐसे बोलते हैं शहजाद भाई।
0: अच्छा, हाँ, आप भी सुनाए कैसे बोलते हैं, आप भी बताएं।
1: नहीं, मैं नहीं आवाजें निकाल सकता। मुझे बकरों की आवाजें निकालने के पैसे मिलते ही नहीं।
0: अच्छा, हाँ, ये बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, बहुत दुआएं आपके लिए। तो हम जब VCR देखते थे ना, लड़के इकट्ठे होके 10-10 रुपए पा के ना, सारे बच्चे 10-10 रुपये पा के VCR लेकर आते थे।
1: अच्छा।
0: तो वो देखते होते थे शहजाद भाई।
1: बिल्कुल ठीक,
0: वो पुरानी बकर की बात है जी।
1: बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया।
0: बहुत अच्छा माशाल्लाह। लेकिन ईद वाला को अल्लाह गुल्ला नहीं हुआ आज, तो ये छोटी ईद पे ही होता है।
1: वो सारे मंडी पहुंचे ने।
0: अच्छा अच्छा। बकरियां ने सिंग वेखने
1: के, वो सारे मंडी पहुंचे ने कि शायद कोई 5 रुपए का बकरा लाभ जे।
0: वो तो बड़ा पीछे जाना पड़ेगा।
1: चले, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, थैंक यू सो मच।
0: बहुत शुक्रिया जी आपके लिए, बहुत ही बहुत ही दुआएं आपको, ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक।
0: वो गोश्त आपसे खाना, जरा गर्मी है, जरा एहतियात से खाना है
1: जी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया।
0: जितना मर्जी खिला देना, कोई ऐसी बात।
1: बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, थैंक यू सो मच
0: जी। अल्लाह
1: हाफिज। अच्छा, मज़े की बात यह कि शहजाद साहब ने कहा कि 5 रुपए का बकरा बेच आए। ऐसा वाकया मेरे ख्याल से कुछ साल पहले हमारे घर में हुआ था, और मेरी बेटी है छोटी, माहरुख उसका नाम है। तो अक्सर गली मोहल्लों में मांगने वाले आते हैं, फ़कीर वगैरह आते हैं, तो आके दरवाज़ा खटखटाते हैं, बेल बजाते हैं, और आप बाहर जाओ तो कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें। तो ऐसे ही हुआ कि बेल बजी, दोपहर का वक्त था, गर्मियों के दिन थे, और बेल बजी और माहरुख ने दरवाज़ा खोला। छोटी थी वो, मेरे ख्याल से कोई 3-4 साल की। दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि बाहर कोई मांगने वाली खातून आई है। तो उस वो घर वापस आई, अंदर आई, और आके उसने अपनी दादी को बताया कि दादो, बाहर एक मांगने वाली कोई आई है औरत। तो अम्मी ने मेरी कहा कि हाँ, वो दराज में पैसे पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप जो है ना वो पैसे निकाल के दे दो। तो माहरुख ने दराज खोला, और दराज खोल के 20 रुपए का नोट था, और वो नोट जाके काम वाली, वो जो बाहर मांगने वाली थी, उसको दे दिया। थोड़ी देर बाद अम्मी गई हैं किसी काम से, और उन्होंने दराज खोला और पैसे ढूंढने लग गई कि यहाँ पे मेरे 5,000 का नोट पड़ा हुआ था। तो वो कोई चीज़ मंगवानी थी, अब वो पैसे ढूंढ रही हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे। तो फिर उनको ख्याल आया कि वो माहरुख को कहा था कि वहाँ से पैसे निकाल के दे दो। तो माहरुख से पूछा कि आपने कहाँ से पैसे निकाले? तो उसने कहा यहाँ से निकाले थे, 20 रुपए का नोट था, वो मैंने डाल के दे दिया। तो वो सदमे से शदीद पागल सारे हो गए कि 20 रुपए देने थे, बाहर कोई काम वाली आई थी, वो मांगने वाली आई थी, तो उसको 20 रुपए का नोट और 5,000 का नोट बड़ा मिलता जुलता होता है, तो वो छोटी बच्ची ने 5,000 का नोट 20 रुपए का समझ के दिया ही। फिर उसके बाद हम भी निकले बाहर उस मांगने वाली को ढूंढने, लेकिन उसने कहाँ मिलना था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे शहजाद साहब का बकरा खरीदने वाला कहाँ मिला होगा, ना बकरा मिला और ना वो, और उसके बाद वो मांगने वाली कभी दोबारा से आई भी नहीं हमारे मोहल्ले में, कहीं आसपास नज़र भी नहीं आया। उसने कहा कि बस एक बारी मेरा दाल लग गया तिल लग गया, तो यूँ तो होता है और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। मुझे याद है कि ये मुझे एग्जैक्टली इसका सन ईयर तो नहीं याद, लेकिन अब वैसे बकरों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में होशो हवास में 5,000 रुपये का बकरा तो ख़रीदा हुआ। मैं अपने चचा के साथ गया था और पहले मंडियाँ तो लगती होती थी, लेकिन गली मोहल्लों में भी लोग ना इस तरह जानवर लेके फिर रहे होते थे बेचने के लिए, तो हम इसी तरह बाहर ज़रा निकले अपने मोहल्ले से, तो करीब ही एक बंदा सफ़ेद रंग के दो बकरों की जोड़ियाँ, तो उसने 10,000 रुपये की जोड़ी दे दी थी हमें, और ठीक ठाक अच्छे बकरे थे, 10,000 रुपये की जोड़ी। और मेरे ख्याल से ये कब की बात होगी, ये शायद मैक्सिमम भी मैक्सिमम मेरा ख्याल से 25 साल पुरानी बात होगी, यानी 2000 की बात होगी, जब सन 2000 शुरू हुआ था, तो इसके आसपास की ही ये बात होगी। 2026 चल रहा है अब, देख लें वो जो 5,000 रुपये वाला बकरा था, मेरा ख्याल से इस वक्त उस 5,000 रुपये की बकरे की प्राइस आज के दिन कम अज़ कम वो 65,000 से 85,000 के दरमियान में कहीं पर होगी। तो वक्त बदल जाता है, वक्त के साथ साथ चीज़ें बड़ी जल्दी बदल जाती हैं, और क्या क्या कुछ बदल जाता है पता ही नहीं चलता। बहरहाल जी, 2 तकरीबन बज चुके हैं और आपका हमारा साथ यहीं तक था। जो जो दोस्त भी आज हमारे साथ मौजूद रहे, सुनते रहे, साथ साथ रहे, आपकी मोहब्बतों, चाहतों, समातों का बेहद शुक्रिया। आप सबको चांद रात बहुत मुबारक, और सुबह इंशाल्लाह ईद है, ईद की नमाज़ पढ़ के फिर जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, और ऐसे मौके पे उन लोगों का ज़रूर एहसास कीजिएगा, ख्याल कीजिएगा, आपके इर्द गिर्द जो लोग कुर्बानी नहीं कर पाए, बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द आस पास, जिनका भरम अल्लाह ताला ने रखा होता है, या जिन्होंने अपना भरम खुद किसी ना किसी तरीके से रखा होता है, लेकिन वो बड़े ज़रूरतमंद होते हैं, वो बड़े सफ़ेद पोश होते हैं। तो अगर आप कुर्बानी करें, या अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का ज़रूर एहसास कीजिएगा, ख्याल कीजिएगा, और उनको अपनी खुशियों में याद रखिएगा, गोश्त उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। यही मौके होते हैं जिनमें आप दोबारा से करीब आ सकते हैं ऐसे लोगों के, जिनसे हम नहीं मिल पा रहे होते, जिनके साथ हम बात नहीं कर पा रहे होते, जिनके साथ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो ये ईद वगैरह के त्यौहार ही होते हैं कि जब हम रूठों को भी मना लेते हैं, रूठे हुओं से मान भी जाते हैं, मना भी लेते हैं, दोबारा से उन रवाबित को हम कायम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां फरमाए, आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी नीयतों को कबूल फरमाए। छोटी मोटी जो हमसे गलतियां कोताहियां हो जाती हैं, बाज़ुकात फ़राइज़ में भी, बाज़ुकात अल्लाह की राह में कुछ करते हुए भी, बाज़ुकात बहैसियत इंसान, बहैसियत बशर कुछ ना कुछ हो जाता है, तो अगर ये नादानी में, अनजाने में इस किस्म की कुछ भी हमसे गलतियां कोताहियां हो जाती हैं, तो उसके लिए हर वक्त माफ़ी ज़रूर मांगते रहा करें, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ईद मुबारक मेरी तरफ़ से, चांद रात मुबारक, और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अब अगले जुमे को आपसे, बल्कि परसों आपसे मुलाकात होगी, ईद के पहले दिन रात 10 से 12 आरजे डॉक्स में और रहमान अनवर हम एक कम्बाइन शो करेंगे। उसके बाद फिर जुमे वाले दिन भी आपसे 10 से 12 और 12 से 2 फिर मुलाकात होगी। मुझे ज़ियान जुम को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और बहुत बहुत ईद मुबारक।

0: Lay-backs taste. New Lay-backs, the ultimate potato chip experience.
1: समन, कबाब नहीं मिल रहे?
2: जी, वो तो खत्म हो गए थे, बाकी मैंने फ्रीजर में रख दिए थे।
1: अच्छा।
3: Well, जनाब, welcome back एक दफा फिर से, खुशामदीद। 12:50 हो चुके हैं और आपका और हमारा साथ कब तक रहने वाला है? 2 बजे तक, जी हाँ, साथ रहने वाला है। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी हमें सुना जा रहा है, आप सबको

0: कर्म गदा मैं तेरी रब्बा से यारा कर्म गदा मैं तेरी
1: दिस इज एफएम 101.